FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे।

0: में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती
2: वंदन वार।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार, आज का चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने से चूक जाएंगे। अर्थात समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए और बात करना चाहिए। अब लीजिए सुनिए भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनिए श्री रामचरित मानस गान भाग 241। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता कार्यक्रम। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज सुनिए श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इस श्रृंखला की 6वीं कड़ी सुनिएगा। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 से हमें राही प्यार की। 8:15 पर त्रिवेणी सुनिएगा।

8:30 सुबह चित्रलोक कार्यक्रम 9:30 पर आज के फनकार। आज का आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता परीक्षित साहनी पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के रीमा अमरापुर से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग सुनेगा, प्रस्तुति तेज श्री कामले। 11 बजे रंग तरंग, 12:05 पर यादों की महफिल। 1 बजे से सुनिए सुरीला सफर।

2 बजे दोपहर त्रिवेणी 2:30 से सदाबहार 9वें सखियों सहेलियों का कार्यक्रम सखी सहेली दिन में 3 बजे से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा सुनिएगा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देउलकर से ममता सिंह की बातचीत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। शाम 5 बजे छायागीत। पांच बजकर 30 मिनट से तराने नए पुराने 6:35 पर संध्या रंजन। छह 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम आपको फिर से याद दिला दें श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका भाग 6। कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार, संवादिका ममता सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला सुनिएगा शाम 7 बजे से 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से आज होगी फिल्म आपकी कसम। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन बस 2 मिनट, लेखक मदन बिहारी शरणदीप, निर्देशक श्याम सुंदर प्रसाद। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए कार्यक्रम। 9:30 आज के फनकार आपको याद दिला दें अभिनेता परीक्षित साहनी पर केंद्रित होगा प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। रात 10 बजे छायागीत प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर ढलती जाए रात और 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

श्री रामचरित मानस के प्रथम दो सोपानों बालकांड तथा अयोध्या कांड की समाप्ति के बाद अब आरंभ होता है तृतीय सोपान अरण्य कांड का संगीतबद्ध रूप। प्रारंभिक श्लोक में दैहिक दैविक तथा भौतिक तीनों प्रकार के ताप हरण करने वाले ब्रह्मा के आत्मज श्री रामचंद्र के प्रिय भगवान शंकर की वंदना की गई है। तत्पश्चात श्री राम की स्तुति की गई है जो अपने श्यामवर्णी शरीर पर पीतांबर, हाथों में धनुष बाण और मस्तक पर जटाजूट धारण किए हुए जनक नंदिनी सीता तथा अनुज लक्ष्मण सहित वन में निवास कर रहे हैं।

एक दिन श्री राम ने अपने हाथों से भांति भांति के सुंदर फूल चुनकर मनमोहक गहने बनाए और सीता जी को परम मनोहारी रूप में सजा दिया। इतने में उनके बल का था लेने के उद्देश्य से इंद्र का पुत्र जयंत एक कौवे का रूप धारण कर सीता जी के कोमल पैरों में चोंच मारकर उड़ गया।

0: आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की छठी कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित रोनू मजुमदार विविध भारती के स्टूडियो में हैं और सुर लहरियां जैसे तैर रही हैं और हम सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं इनकी बातें और बांसुरी की तान। दादा, हमारे मन में एक बात आ रही है कि आपने बहुत सारे फिल्मी गानों में बांसुरी बजाई है
2: जी।
1: तो उन फिल्मी गीतों का हम क्यों न चर्चा करें।
2: जैसे मैं आर डी बर्मन के पास गया तो लव स्टोरी से तो मेरी एंट्री हो गई
1: जी जी।
2: तो उसके बाद अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, किशोरदा के साथ और ऊंचे

श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका।

0: तारा, ये गाने में भी मेरा सोलो
1: वाह,
0: है।
1: इसमें बांसुरी पर आप अगर सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को तो बड़ा अच्छा लगेगा, हम आपको तकलीफ देते चल रहे हैं।
0: मुखड़ा अंतरा तो याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुनाता हूं।

0: वाह।
1: इसमें शुरू में फ्लूट का आलाप है, किशोरदा आते ही सिंगर बूथ की तरफ जाते थे, कहीं देखे बगैर।
0: अच्छा।
1: थोड़ा आगे गए और फिर पीछे मुड़ के मेरे पास आ गए, मुझे बोले कि अच्छा मेरी प्रैक्टिस स्टूडियो में भी चलती रहती थी।
0: जी जी।
1: तो मैं अपना पीलू बजा रहा था, तो बोलते पीलू क्यों बजा रहा है, मुझे बहुत दुख होता है, तू पहाड़ी बजा पहाड़ी।
0: अच्छा।
1: मैंने बोला अरे बड़ा अजीब आदमी है। तो मैं तो था बच्चा। बोले कि एक डेट उन्होंने पूछा, समझ लीजिए 25 तारीख को तू फ्री है, मेरे साथ सन्मुखानंद में बजाएगा।
0: अच्छा
1: अच्छा। बच्चा ऐसा होता है कि उसको ये समझ नहीं होती कि बड़े लोगों को क्या नहीं कहना चाहिए।
0: अच्छा।
1: आज का रोनू मजुमदार होता तो नहीं बोलता। मेरे जो मन में आया मैंने बोल दिया। अच्छा थे तो पिता के उम्र के, मगर इंडस्ट्री में दादा दीदी ये चलता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: राज जी, दिलीप साहब, रफी साहब, किशोरदा, ऐसे उसको संज्ञा दी जाती है। तो किशोर कुमार सुपरस्टार को मैंने कहा कि मैं ऑर्केस्ट्रा में नहीं बजाता हूँ।
0: ओहो।
1: मैं क्लासिकल आर्टिस्ट हूँ, स्टूडियो के अंदर ठीक है। कहाँ तो नाराज होके बोल सकते थे पंचम दास से, अरे ये बड़ा लड़का बदतमीज है, इसको निकालो बाहर। वो बजाएगा नहीं तो पूजा कैसे होगा है। देख मेरे जैसा कंजूस फ्री में गा रहा है,
0: क्या बात है।
1: ऐसे थे हमारे किशोरदा। बोले मेरे जैसा कंजूस, उनको ये भी मालूम नहीं था कि वो भगवान जैसा गाते हैं।
0: जी जी जी।
1: ऐसा कोई गा ही नहीं सकता।
0: जी जी।
1: तो दुर्गा पूजा बंगालियों का होता है शिवाजी पार्क में, वो बंगाल क्लब का है, बंगाल क्लब के लिए वो गा रहे थे।
0: जी।
1: जैसे ही उन्होंने कहा तो मैंने तुरंत पांव पकड़ लिया, दादा मुझे माफ करिए मैं बजाऊंगा। तो ऐसे थे हमारे किशोरदा।
0: जी जी।
1: तो किशोरदा के साथ मैं घर गया फिर गौरीकुंज। तो उस दिन मुझे मालूम पड़ा कि वो माँ के बहुत बड़े भक्त थे, अपने माँ के, गौरी प्रसन्न गांगुली।
0: जी जी। अच्छा। उनकी माँ का नाम,
1: उनकी माँ का नाम, तो माँ के नाम से ही वो बंगला बनाया। फिर वहां पे चलती का नाम गाड़ी वाला, वो जो गाड़ी है वो वहां पे आज भी खड़ी है। वो एक एक समझिए ना, एक पुराने जमाने की याद ताजा करता है। तो अगर तुम ना होते, ऊंचे लोग, और एक गाने में लता जी याद करती है, जो लता जी मेरे साथ पीले कलर का फोन लेके जो खड़ी है, वो जो फोटो आप लोग देखते हैं बहुत फेमस जो फोटो मेरा है, जो मैं उनके जन्मदिन में हरदम पोस्ट करता हूँ।
0: जी जी।
1: तभी भी वो याद कर रही थी मेरे स्टूडियो में आके, ट्रायो डिजिटल मेरा स्टूडियो है।
0: जी।
1: तो वहां आई तो बोल रही थी कि तूने जमीन आसमान में जो फ्लूट बजाया था वो आज भी याद आता है रोनू, आजकल ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं होता। बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी। खुद के लिए नहीं, संगीत के लिए। क्या ये जमाना है, क्या हो रहा है, ये कटपेस से कैसे चलेगा। मैं आपको वो पीस सुना रहा हूँ जो जमीन
0: जी,
1: आसमान का
0: जी,
1: में मैंने
0: स्वागत।
1: देखिए अजीत भाई, ये वही है बांसुरी वाली बात की, रे को साकर के मुझे बजाना पड़ेगा

0: वाह,
1: मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसा दीदी ने इसको गाया है, प्लीज
0: ये गाना
1: जरा आप श्रोताओं को सुनवा दीजिए, फिर कुछ बातें मैं अगले एपिसोड में बोलूंगा
0: जी। सुनवाते हैं यही गीत।

0: ये गाना भी अद्भुत है, बड़ी ऊंचे सुर में लता दीदी ले जाती हैं और
1: जी
0: आपकी बांसुरी की तान तो बिल्कुल मोहित कर देती है।
2: तारा रा रा तारा रा रा ता ता ता ता ता, मतलब इतना ऊपर के स्वरों को दीदी उसमें भी एक मेलोडी को कायम रखती थी।
0: जी जी,
2: कर्कशता से कोसों दूर, कर्कशता तो शायद उनको स्पेलिंग भी उसका व्याकरण भी उनको मालूम है।
0: सुर कोकिला तभी तो कहा
2: जाता है। स्वर कोकिला, माँ सरस्वती गा रही है, क्या बात करने का, हजार राहें मैंने बजाया। मुझे एक बात कहनी है जाने से पहले, शशि जी था उस दिन, शशि कपूर
0: जी
2: और राखी जी जो इस फिल्म में है, ये दोनों उस दिन मौजूद थे।
0: अरे वाह,
2: स्टूडियो में। और शशि कपूर जी जिस तरीके से, अरे क्या बात है, क्या बांसुरी बजाते हो बंगाली बाबू, तो जैसे जिंदा दिल वो फिल्मों में दिखते हैं, जितनी खूबसूरत उनकी हंसी, इतने ही खूबसूरत वो ऑफ द स्क्रीन भी वैसे ही थे वो। और देव साहब, तो देवानंद के साथ भी मैंने काम किया
0: जी।
2: आप सोचते होंगे इतनी तो मेरी उम्र नहीं है
0: जी।
2: कि नहीं। मैं देवानंद के साथ मैंने काम किया है
0: जी।
2: आप सोचिए।
0: तो दादा, ये जो मुलाकात है आपकी इन लोगों से, इन मुलाकातों का भी जिक्र करें, लेकिन अब आज तो हम यहाँ पर
2: अगले एपिसोड में मैं कुछ खास बातें बताऊंगा
0: जी। तो जी। अब आज श्रोताओं से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
3: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।

टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज थी, साहिल लुधियानवी की रचना थी, एसटी बर्मन की तर्ज थी। आज हम इन कुछ गानों के माध्यम से याद कर रहे हैं फिल्मकार चेतन आनंद को। सुनते हैं ये गीत। ये फिल्म किनारे किनारे का गीत है, आवाज मन्ना डे की है।

0: किनारे किनारे फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज थी। न्याय शर्मा ने इस गीत को लिखा था और जयदेव ने इस गीत की धुन बनाई थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: अफसर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, सुरैया की आवाज़ थी। नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और एस डी बर्मन ने धुन बनाई थी। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
4: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
5: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
6: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का शेष भाग इस बहुत छोटे से अंतराल के बाद।

0: हिम्मत।
1: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फंटूश फिल्म का गाना, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की थी, साहिल उद्यानवी के बोल थे, एसटी बर्मन की धुन थी। लीजिए अब सुने बावरे नैन फिल्म का ये गीत जिसे गाया है गीता रॉय और मुकेश ने।

0: बाबरी नैन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी गीता रॉय और मुकेश की। केदार शर्मा ने इस गीत को लिखा था और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी IVF या IUI हम लोग नहीं कर सकते, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्रोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, टेट्राजॉल और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस डिफिशिएंसी है, B12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

बाबुल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के आवाजों में। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा था और इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद अली ने। और इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, सविता सिंह को नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्कार, नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सुविचार से। जी हाँ श्रोताओं,

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कथन है कि जो बात सिद्धांत में गलत है वह बात व्यवहार में भी सही नहीं हो सकता। और श्रोताओं, आज 6 जुलाई है, तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं 6 जुलाई के इतिहास के बारे में। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि 6 जुलाई को भारतीय और विश्व इतिहास में कई प्रमुख घटनाएं दर्ज हैं। जी हाँ, आज ही के दिन 1944 में महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के दौरान महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 1885 में आज ही के दिन फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत और चीन के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नाथुला दर्रा को फिर से आज ही के दिन 2006 में खोला गया। आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई को 2006 में विश्व कप फुटबॉल में फ्रांस ने पुर्तगाल को हराया। जुलाई 2012 को संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकता द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2012 के अनुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए 2012 से 2014 की अवधि में चीन और अमेरिका के बाद भारत सबसे आकर्षक निवेश स्थल रहा। और अब लेते हैं थोड़ी सी जानकारी 6 जुलाई को जन्मे कुछ विशेष व्यक्तित्व के बारे में। तो आपको बता दें कि आज ही के दिन 1935 में बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी का जन्म हुआ। 1906 में आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक दौलत सिंह कोठारी का भी जन्म हुआ। 1901 में भारतीय राजनीतिज्ञ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म भी 6 जुलाई को हुआ। जी हाँ, 6 जुलाई 1901 को इनका जन्म हुआ। 1905 में आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई को भारत की प्रख्यात समाज सुधारक लक्ष्मीबाई केलकर का भी जन्म हुआ। और अब बात करें 6 जुलाई को दिवंगत कुछ प्रसिद्ध शख्सियत के बारे में। तो आपको बता दें कि अकबर के प्रमुख सेनापति मान सिंह की मृत्यु आज ही के दिन 1614 में हो गई थी। 1954 में आज ही के दिन भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराबजी का भी निधन हो गया। 1997 में आज ही के दिन यानी कि 6 जुलाई को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक चेतन आनंद का निधन हो गया।

तो ये थी थोड़ी सी जानकारी 6 जुलाई के इतिहास के बारे में। और अब इसी के साथ कार्यक्रम में हम आपको सुनवा देते हैं एक भक्ति रचना। जी हाँ, सुनते हैं हरिहरन की आवाज़ में महेंद्र देहलवी का लिखा हुआ एक भक्ति गीत, जिसकी धुन बनाई सुरेंद्र कोहली ने और फिल्म है 4 धाम।

हरिहरन की आवाज़ में अभी आपने सुना ये भक्ति रचना फिल्म चारधाम से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। नमस्ते रोहतास के इस अगले सेगमेंट में अब आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। रोहतास और कैमूर जिले में पहली से आठवीं तक की त्रैमासिक परीक्षा सभी सरकारी स्कूलों में कल 7 जुलाई से शुरू होगी। जी हाँ, सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की पहली त्रैमासिक परीक्षा कल से शुरू हो रही है। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने परीक्षा कार्यक्रम और दिशा निर्देश जारी किए हैं। और आपको बता दें कि पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का विषयवार मूल्यांकन कल से शुरू होकर आगामी 13 जुलाई तक चलेगा।

रोहतास जिले में अब स्मार्ट बनेंगी पंचायतें, खुलेंगी लाइब्रेरी और चलेंगे डिजिटल क्लासरूम। जी हाँ, बिहार सरकार ने हर ज़िले से पांच पांच ऐसी पंचायतों की सूची मांगी है जहां आने वाले समय में लर्निंग सेंटर खोले जा सकेंगे। अब रोहतास और कैमूर जिले में शैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन पूरी तरह मुफ्त। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केंद्रीय, राज्य मानित और निजी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक योग्यताओं का सत्यापन पूरी तरह निःशुल्क करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति के दौरान शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन अनिवार्य प्रक्रिया है और इसके लिए किसी भी तरह का शुल्क लेना उचित नहीं है। आयोग ने साफ किया है कि भर्ती एजेंसियों के मांगने पर कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता की पुष्टि से इनकार नहीं करेगा। छात्रों से सत्यापन के नाम पर शुल्क भी नहीं वसूला जाएगा। UGC ने बताया है कि पहले भी इस संबंध में दिशा निर्देश समय समय पर जारी होते रहे हैं।

योग से जीवन आरोग्य और सुखमय हो जाता है। जी हाँ, कैमूर के पातंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास के तत्वाधान में 7 दिवसीय योग एवं रोग निवारण शिविर का समापन कल रविवार को रिक्रिएशन क्लब में हो गया। मौके पर आध्यात्मिक योग से जुड़ी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पातंजलि योग समिति के जिला प्रभारी ने की और वे भारत स्वाभिमान न्यास कैमूर के सक्रिय सदस्य भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। नियमित योग से शारीरिक और मानसिक व्याधियां यानी कि रोग दूर हो जाते हैं और जीवन में आरोग्य बना रहता है, जीवन सुखमय होता है। स्वास्थ्य सर्वोपरि धन है हम सबके लिए, इसलिए नियमित रूप से योग जरूर करें। अब सभी सरकारी स्कूलों में चेतना सत्र में लाउड स्पीकर जरूरी। रोहतास और कैमूर जिले के DEO ने पत्र से दिए हैं निर्देश। आधे घंटे सभी सरकारी विद्यालयों में किया जाता है चेतना सत्र का आयोजन और इस चेतना सत्र के आयोजन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपने पत्र में कहा है कि जिन विद्यालयों में अगर लाउड स्पीकर का प्रयोग और उपयोग नहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निरीक्षण के दौरान चेतना सत्र में लाउड स्पीकर की अगर अनुपस्थिति बनी रहती है तो वहां के प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण भी देना होगा। और पत्र में कहा गया है कि बच्चों को समय से विद्यालय आने और समय से चेतना सत्र में शामिल होने के लिए भी सभी प्रधानाध्यापक और शिक्षक तत्पर रहेंगे और लाउड स्पीकर का उपयोग हर हाल में सुनिश्चित करेंगे।

किसानों के फार्मर रजिस्ट्री में कैमूर जिला राज्य में 12वें स्थान पर। कैमूर जिले में 1,05,410 किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो चुकी है। पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से लागू करने के लिए जरूरी दस्तावेजों व तकनीकी पहलुओं की किसानों को जानकारी दी जा रही है। कैमूर डीएम नितिन कुमार सिंह ने कहा है कि फार्मर रजिस्ट्री किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं सुगम तरीके से उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने सभी पात्र किसानों से अपील किया है कि अपना फार्मर रजिस्ट्री कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। कैमूर जिला प्रशासन निर्धारित समय सीमा के भीतर 100% फार्मर रजिस्ट्री लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

परिवार नियोजन पखवाड़ा रोहतास जिले में 11 जुलाई से। जी हाँ, स्वास्थ्य बीमा विभाग 11 जुलाई से रोहतास जिले के सभी सदर अस्पतालों में परिवार नियोजन पखवाड़ा शुरू करेगा। पखवाड़ा तय अवधि तक सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों पर नियमित रूप से चलेगा। इसका मकसद योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के लिए जागरूक करना है, जरूरत के मुताबिक सुरक्षित निःशुल्क सेवाएँ देना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्रों पर भी परिवार नियोजन पखवाड़ा मनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना में काम कर रहे शिक्षा सेवकों, शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, इन सब की कार्यशैली पर सख्त रुख अपनाया है। रोहतास जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला के कार्यक्रम पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से शिक्षा सेवकों से तय सभी दायित्वों का शत प्रतिशत

पालन करने का निर्देश दिया है। समय समय पर भौतिक निरीक्षण कर काम की निगरानी करने को भी कहा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जन शिक्षा के पत्र के माध्यम से कई स्तरों पर लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है। रोहतास जिला में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ। प्रथम दिन लगभग 50 बच्चों ने लिया प्रशिक्षण। जी हां, जिला पदाधिकारी रोहतास के निर्देशानुसार रोहतास जिला अंतर्गत आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस लगभग 50 बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। प्रशिक्षण के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और प्रतिनियुक्त शिक्षकों को उन्होंने इस योजना में बढ़ चढ़कर भाग लेने का निर्देश दिया। और इस अवसर पर जिला एवं संस्कृति पदाधिकारी, जिला के संस्कृति पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र की गतिविधियों का जायजा भी लिया गया और योजना का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करने के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। सभी वक्ताओं ने कहा कि कला शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए उपर्युक्त सभी शिक्षक जो कि इसमें भाग ले रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वे शास्त्रीय कलाओं का पूर्णतः सही ढंग से पालन कराएं।

रोहतास जिला के BMP 2 परिसर में कल स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया गया। बेहतर जीवन शैली एवं संतुलित आहार को लेकर आवश्यक परामर्श भी दिया गया। जी हां, डिहरी के स्थानीय BMP 2 परिसर में व्यापक स्वास्थ्य जांच शिविर लगा। महिला जवानों की जांच हुई, पुरुष जवानों की भी जांच हुई, गर्भवती महिलाओं की भी जांच हुई, बच्चों की भी जांच हुई। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया, बेहतर जीवन शैली पर सलाह दी, संतुलित आहार को लेकर परामर्श दिया। शिविर में 80 से अधिक लोगों ने अलग अलग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया। गर्भवती महिलाओं की विशेष जांच की गई, उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी पर जानकारी दी गई, पोषण की जरूरतें बताई गईं, सुरक्षित मातृत्व पर विस्तार से समझाया गया। महिला चिकित्सकों ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को समय समय पर जाँच कराने के लिए प्रेरित करना अनिवार्य है, साथ ही उन्हें पौष्टिक भोजन लेने की भी सलाह दी गई। चिकित्सकीय सलाह का पालन करने पर जोर दिया गया। और चलते चलते एक और खबर आपको, जी हाँ, बताते हैं कि विधिक सेवा प्राधिकार खत्म करेगा गांव में बाल विवाह। बाल विवाह पर अब गांव-गांव में जागरूकता, भीतरी बांध में विधिक सेवा आयोजित। बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए कैमूर जिला विधिक सेवा प्राधिकार अब सीधे गांवों में उतर गया है। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में पंचायत सरकार भवन भीतरी बांध प्रखंड रामपुर में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मकसद ग्रामीणों को बताना था कि बाल विवाह सामाजिक अपराध है और यह कानूनन सजा योग्य अपराध है।

श्रोताओं, ये थी जानकारी स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में। और अब लीजिए, सुनिए एक बेहद ही खूबसूरत गीत मुकेश की आवाज़ में। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है और फिल्म है मेरा नाम जोकर।

श्रोताओं, मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे मेरा नाम जोकर फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत। और अब आइए एक नज़र डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रभात खबर ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल किया एम्स का निरीक्षण, हर संभव मदद का दिया भरोसा। जी हाँ, पटना एम्स को अब मिलेगी 24 एकड़ जमीन, बढ़ेंगे 200 बेड। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार एम्स पटना के विस्तार और विकास के लिए हर संभव सहयोग करेगी। एम्स के विस्तार के लिए कुल 24 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और उन्होंने कहा है कि संस्थाओं में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, अधिसंरचना और भविष्य की विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर इसके आवश्यक निर्देश दिए जाएं और एम्स में पटना के नाथूपुर तक 4 लेन सड़क के निर्माण के लिए भी आवश्यक सहयोग और समन्वय सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उन्होंने मरीजों, उनके परिजनों और आम नागरिकों को बेहतर और सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में भी निर्देश दिए। हिंदुस्तान अखबार ने अपने मुख्य पृष्ठ पर छापा है कि बिहार राज्य में 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर लगेगा टोल टैक्स। 94 ऐसे पुल हैं पथ निर्माण विभाग के अधीन बिहार राज्य में। 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर तय

है छोटे वाहन पर टोल टैक्स। पुल के साथ उसके अप्रोच की लंबाई भी मापी जाएगी। टोल वसूलने की जिम्मेदारी निजी एजेंसियों को मिलेगी। स्टेट हाईवे और राज्य के पुलों पर लगना है टोल टैक्स, और इन बड़े पुलों पर भी चुकाना होगा टोल टैक्स। कच्ची दरगाह से बिदुपुर पुल, बख्तियारपुर से ताजापुर पुल, दरभंगा से करेर नदी पुल, नवगछिया से कोसी नदी पुल, पुलतौरा घाट से खगड़िया पुल, गया फल्गू नदी पुल, नालंदा सकरी नदी पुल, आरा छपरा गंगा नदी पुल, सहरसा में बलुआहा घाट पुल, गोपालगंज और बेतिया पुल। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि नाबार्ड चलाएंगे वित्तीय साक्षरता अभियान। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यव्यापी वित्तीय साक्षरता अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में सहकारी बैंकों और नाबार्ड के सहयोग से अलग अलग प्रखंडों और पंचायतों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाए जाएंगे। और चलते चलते खेल की तरफ रुख करते हैं, तो आपको बता दें कि दैनिक जागरण ने लिखा है कि गुरनूर ने तोड़ी श्रीलंकाई बल्लेबाजी की कमर। जी हां, तेज गेंदबाज गुरनूर बड़ारण ने कल रविवार को दूसरे और अंतिम अनौपचारिक टेस्ट में कुल 10 विकेट लेकर भारत ए को श्रीलंका ए पर शानदार 10 विकेट की जीत दिलाकर अगले महीने श्रीलंका के विरुद्ध संभावित टेस्ट पर्दापण के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली। और चलते चलते आइए करते हैं मौसम का रुख। तो आपको बता दें कि आज रोहतास जिले में मौसम के अंतर्गत बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश होने या बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। आज का तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। तो अब इसी के साथ नमस्ते रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

नमस्ते रोहतास, ये प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे हिंदी समाचार। कृपया कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का

0: शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा।

0: द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। वार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाइड प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। ये बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में साइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष

0: 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
3: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय

0: पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। जी हाँ, समाचार प्रभात हम रिले कर रहे थे और ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे देशभक्ति संगीत कार्यक्रम। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सुनिधि चौहान और सत्यजीत जीना की युगल आवाज़ में गुलजार का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत, जिसकी धुन बनाई शंकर एहसान लॉय ने है और फिल्म है राजी।

राजी फिल्म का ये देशभक्ति गीत अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और सत्यजीत जीना की युगल आवाज़ में। और इसी के साथ हमारा आज का यह देशभक्ति संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे पत्र पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी।

पसंद आपके कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ आप सभी के ख़तों को हम पढ़ना शुरू करते हैं। और ये पहला ख़त जो हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में, वो आया है राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म के गीत के लिए। और इस फिल्म का गीत सुनना चाहा थाना मोड़ गढ़नुखा रोहतास से मुन्ना भाई मंसूरी, नजमून निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शबाना और शाहबाज ने। कुछ और श्रोता भी हैं जो कोई सभी गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं। जी हाँ, आप हैं जबरा पहाड़ी रोहतास से सूरज चौरसिया, टेंगर प्रसाद चौरसिया, मदन प्रसाद चौरसिया, समीर कुमार, मनभावती देवी, कलावती देवी, अनुप्रिया कुमारी, नायडू कुमारी। और इन्होंने बड़ा ही प्यारा सा ये संदेश लिखा है कि हम सभी भाई बहनों की तरफ से समस्त सासाराम आकाशवाणी परिवार को नमस्कार, हमारी फरमाइश ज़रूर पूरी करें। तो बिल्कुल हम पूरी करने जा रहे हैं। और आप हैं नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, वसीम अकरम, आरिज वसीम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, इशरत अकरम, रुबीना वसीम, नदीम अकरम, अमन अकरम, पूनम कुमारी शर्मा, बच्चू सैख, जीना सैख। और एक और खत हमारे हाथों में है और इन श्रोताओं के नाम हैं हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, अरहान, हमजा और मुजम्मिल। आप सब हैं नूर महल महसौल से। तो चलिए आप सबको सुनवाते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर जी ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत है रविंद्र जैन का।

0: अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जन्म जन्म फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। और इस गीत को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। फुटानी चौक नरहन स्टेट से भाई फटफटिया झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। और आप हैं बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। और अब शोर फिल्म के गीत के लिए हमें ये ख़त लिखकर भेजा है पठान टोली कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान, निखत प्रवीण, सदफ आरजू, साहिल अरमान, शमा प्रवीण, आफिया तस्नीम और अलीशा ने। शोर फिल्म का गीत का बोल भी इन्होंने इस पत्र में लिखा है। जी हाँ, बोल है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो जी बिल्कुल, लीजिए सुनिए आप सब अपनी पसंद का ये गीत मुकेश और लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज़ में। गीत लिखा राजकवि इंद्रजीत सिंह तुलसी ने और संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

पसंद आपके कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाने जा रहे हैं जीत फिल्म का गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की युगल आवाज में। समीर के बोल हैं, नदीम श्रवण का संगीत है।

0: जीत फिल्म का ये गीत सुनना चाहा। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव रंजन, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम और साक्षी ने। नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन पप्पू जी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। और आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम अब संपन्न होने को चला है, लेकिन चलते चलते आपको कार्यक्रम का पता बता देते हैं। हमारे कार्यक्रम का पता है कार्यक्रम पसंद आपकी द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115। तो इस पते पर अपनी नाम, अपना फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भेज दें और हम उसे इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और अब पसंद आपके कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। आइए चलते हैं आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार के लिए।
1: समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
2: दिनांक 2 जुलाई से 8 जुलाई तक राज्य भर में मनाया जा रहा है बिहार सतर्कता जागरूकता सप्ताह। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं।
3: बिहार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है अब भ्रष्टाचार के खिलाफ।
2: भ्रष्टाचार की शिकायत टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें या संपर्क करें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो अथवा विशेष निगरानी इकाई कार्यालय में।
3: भ्रष्टाचार मुक्त बिहार।
2: निगरानी विभाग व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 1663 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय। मौसम विभाग ने आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत बिहार के लिए 1663 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी राज्यों के लिए योजना की पहली किस्त की राशि जारी की। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह राशि अगले 3 महीने के लिए जारी की गई है। इस राशि में राज्य सरकार का भी हिस्सा मिलाया जाएगा, जिससे पंचायतों का विकास आसानी से होगा। गौरतलब है कि यह राशि पूर्व में 9 महीने के लिए निर्धारित अंतरिम बजट से जारी की गई है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करेगी। कल भोजपुर जिले के शाहपुर के बिलौटी गांव में भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि दोषियों को कानून के अनुसार कठोरतम दंड मिलेगा।
1: दुखड़ी में आपके हम लोग साथ खड़े हैं, पूरी सरकार आपके साथ है। जो भी लोग इसमें ओवर एक्ट किए हैं या जो भी लोग जो पदाधिकारी में इसकी संलिप्तता है, उन लोगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसीलिए कोई विद्वेष की भावना नहीं रखिए। पूरी तरह से हम इस घटना हुई है उसमें हम सब लोग आपके साथ साथ मरमाहत हैं।
0: इधर इस घटना के मामले में अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस ने 12 कंटेंट क्रिएटर पर मामला दर्ज किया है। पटना साइबर थाने के DSP नीतीश चंद्र धारिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर गलत और तथ्यहीन पोस्ट के मामले में यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि 50 से अधिक पोस्ट को हटाया गया है। राज्य सरकार ने भागलपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा और सीतामढ़ी में बनने वाले 4 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी है। नगर विकास विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में नए निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह रोक अगले वर्ष 30 जून तक प्रभावी रहेगी। विभाग के अनुसार पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में प्रस्तावित टाउनशिप में पहले ही जमीन खरीद बिक्री पर रोक है। राज्य में गन्ना किसानों को आधुनिक खेती करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगभग 3400 करोड़ रुपए की गन्ना यांत्रीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों के बीच 3218 आधुनिक कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे। साथ ही 80 नए यंत्र बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बैंक में न्यूनतम 7 यंत्र अनिवार्य रूप से रहेंगे। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि

0: आधारित स्टार्टअप से कॉलेज के छात्रों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों को कृषि, बागवानी, डेयरी, मत्स्य और मधुमक्खी पालन तथा खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभागों की जानकारी दी जाएगी। राज्य में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला गार्डों की तैनाती की जाएगी। समाज कल्याण विभाग की मंत्री श्वेता गुप्ता ने बताया कि राज्य के 11 जिलों में चल रहे सभी 61 वन स्टॉप सह सखी केंद्र पर महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। मंत्री ने बताया कि पटना सहित 27 जिलों में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कोई स्थान तय नहीं है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में अल्पावास गृह बंद हो गए हैं उन स्थानों पर शक्ति केंद्र के नाम से अल्पावास गृह खोले जाएंगे। राज्य में पंचायत स्तर पर मछली उत्पादक समितियों का गठन किया जाएगा। डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग के सचिव शीर्षत कपिल अशोक ने बताया कि सहकारिता विभाग से मंजूरी के बाद पंचायत स्तर पर मत्स्य सहकारी समितियां गठित की जाएंगी। श्री अशोक ने कहा कि इस समिति में पंचायत के सभी मछली उत्पादकों को शामिल किया जाएगा और समितियों के माध्यम से ही मछली की खरीद बिक्री की जाएगी। उन्होंने बताया कि पंचायत मत्स्य सहयोग समिति का उपनियम बनाया जा रहा है, इसी के आधार पर समिति का संचालन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय और अनुमंडल मुख्यालयों में भी मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। विभाग के अनुसार इसके पूर्व सभी प्रखंडों में एक एक स्कूल का चयन मॉडल स्कूल के लिए किया गया है। इन मॉडल स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक प्रयोगशाला और अनुभवी शिक्षक होंगे। इसके साथ ही छात्रों को 9वीं और कक्षा से ही नीट और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम ने आधार से नकद निकासी के दौरान 5,000 रुपये से अधिक की निकासी पर बायोमेट्रिक सत्यापन के साथ ओटीपी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया है। निगम के अनुसार नए नियम के साथ 5,000 रुपये से अधिक की निकासी के लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा। ओटीपी सत्यापन के बाद पैसा निकाला जा सकेगा। इससे पहले नकद निकासी के लिए निर्धारित सीमा तक राशि निकालने के लिए केवल बायोमेट्रिक सत्यापन ही पर्याप्त था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही विभाग ने अरवल, बांका, गयाजी, नालंदा और नवादा समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
3: दिनांक 6 जुलाई, राज्य के औरंगाबाद, भभुआ एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के अरवल, औरंगाबाद, बांका, भभुआ, गया, जहानाबाद, जमुई, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास एवं शेखपुरा जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर एवं पटना जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा, सुपौल और भोजपुर समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। बारिश से राज्य के अधिकांश हिस्सों के अधिकतम तापमान

एक से चार डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। ज्यादातर स्थानों का तापमान 35 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। मधुबनी जिला प्रशासन ने बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में प्री स्कूल समेत वर्ग 8 तक की कक्षाओं में पठन पाठन सुबह 6:30 बजे से 11 बजे तक करने का आदेश दिया है। यह आदेश आज से 11 जुलाई तक प्रभावी रहेगा। समग्र राज्य आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें याद कर रहा है। संस्कृति मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर इस अवसर पर कोलकाता में कार्यक्रम आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इधर प्रदेश में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार के लिए आज अपने सदस्यों की बैठक बुलाई है। ट्रस्ट की बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब यह राम मंदिर परिसर में ही होगी। इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अररिया जिले के महलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत चिरह पंचायत के उदा गांव से पुलिस ने दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। गया जिले के साइबर थाने की पुलिस ने साइबर ठगों को मोबाइल सिम देने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार युवक के पास से कई कंपनियों के 47 सिम कार्ड बरामद किए हैं। किशनगंज पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई में अंतरराज्यीय मादक पदार्थ गिरोह के दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से 516 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है। वहीं जिले के कोचा धामन थाना क्षेत्र से मवेशी व्यापारी से हुई लूट की घटना के मामले में पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के परसोथुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने दुकानों में चोरी करने के आरोपित मोहम्मद अजीम को पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक को भी जब्त किया है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने पूर्णिया और कटिहार जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से प्रतिभा खोज अभियान के तहत 350 खिलाड़ियों का चयन किया है। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरण ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक आयोजित चयन शिविर में 12 से 14 आयु वर्ग के खिलाड़ियों का चयन किया गया है। महानिदेशक ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को एथलेटिक्स और तीरंदाजी समेत अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही यदि किसी क्षेत्र में खिलाड़ियों की संख्या अधिक होगी तो उन स्थानों पर नए एकलव्य केंद्र खोले जाएंगे। इस अभियान के अगले चरण में जमुई, रोहतास, पश्चिम चंपारण और कैमूर के जनजातीय बहुल क्षेत्र में खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी अखबारों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की बड़ी खबर है, पटना एम्स को 24 एकड़ जमीन मिलेगी, 200 बेड बढ़ेंगे। दैनिक जागरण ने लिखा है, बांकीपुर विधानसभा सीट पर राजद के साथ कांग्रेस भी जता रही दावा, अब शीर्ष नेतृत्व सुलझाएगा पेच। दैनिक भास्कर ने अयोध्या राम मंदिर पर लिखा है, श्री राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज, चंपत राय समेत 3 ट्रस्टियों की सुरक्षा बढ़ाने पर विचार। प्रभात खबर लिखता है, राज्य में इको टूरिज्म के लिए 70 जगहें बनेगी पर्यटकों की पसंदीदा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कांवर झील और राजगीर बनेंगे प्रमुख आकर्षण। आज अखबार का शीर्षक है, 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड से बदलेगी पटना की तस्वीर, वेंडिंग जोन से न्यू मार्केट तक होगा कायाकल्प, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। राष्ट्रीय सागर की सुर्खी है, पटना, पालीगंज, मोकामा और नौबतपुर में बनेगा अत्याधुनिक बस डिपो। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत बिहार के लिए 1663.56 करोड़ रुपए की राशि जारी की। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, राज्य सरकार भरत तिवारी मुठभेड़ मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जाँच सुनिश्चित कराएगी। और पूरे प्रदेश में मॉनसून हुआ सक्रिय, मौसम विभाग ने

0: आज औरंगाबाद, भभुआ और रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
2: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है।

0: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
1: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें। जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
0: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:06 हो रहे हैं। कार्यक्रम व्यूरर के अंतर्गत आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों पर।

अपराह्न 12:05 से अपराह्न 2 बजे तक, अपराह्न 2:30 से शाम 5 बजे तक और रात 9:30 से रात 10 बजे तक। अपराह्न 12 बजे से आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 12:05 से सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। 2 बजे से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर इलाकाई खबरें। 2:10 पर रोजगार सूचना। 2:10 पर रोजगार सूचना हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार आप सुनेंगे 2:15 पर। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनिएगा हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर कार्यक्रम ब्यूरो हम लेकर आएंगे आकाशवाणी सासाराम से। सासाराम से ही आप सुनेंगे 5:10 पर वंदन कार्यक्रम में कुछ भक्ति संगीत। शाम 5:30 का समय होगा महिला वनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन का। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत का कार्यक्रम। 6:05 पर आकाशवाणी पटना से सुनिएगा भोजपुरी बुलेटिन समाचार। 6:10 से 6:40 तक हम लेकर आएंगे ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम गांव घर। 6:40 से शाम 7 बजे तक आप सुनेंगे सांझ गीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का प्रसारण हम लेकर आएंगे शाम 7 बजे से। सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास आप सुनेंगे 7:15 पर। 7:25 से हम रिले करेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार और तत्पश्चात जिले की हलचल। 7:50 से रात 8:45 तक आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद हमारे सासाराम केंद्र से। रात 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार संध्या के लिए। रात 9 बजे लोकधारा कार्यक्रम में भोजपुरी लोकगीत और 9:15 पर बंदगी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे नाथ हमारे सासाराम केंद्र से। 9:30 पर सुनिएगा आकाशवाणी विविध भारती से आज के फनकार। रात 10 बजे कार्यक्रम होगा रसरंग और 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रपट तराने। अगले दिन का कार्यक्रम विवरण और मौसम पूर्वानुमान हम लेकर उपस्थित होंगे रात 10:55 से। रात 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार हम रिले करेंगे हमारे आकाशवाणी दिल्ली से। हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। गीत मालिका कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुछ हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वीर जारा फिल्म से एक गीत जिसे गाया है सोनू निगम के साथ लता मंगेशकर जी ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है मदन मोहन का।

अब से थोड़ी ही देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मालिका। गीत मालिका कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ नए फिल्मों से लिए गए गीत। 9:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम आज के फनकार के लिए। सुबह 10 से आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 10:05 पर हम लेकर आएंगे हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन। 10:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी में भोजपुरी एल्बम लोक गीत। 10:45 पर आपको सुनवाएंगे दस्तार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग।

11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग। आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण आज आप सुनेंगे 11 बजे से अपराह्न 12 बजे तक।

पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी से चले ही जाते हैं, लेकिन उनके जाने का गम हमें हमेशा याद आता है और उनकी कमी उम्र भर नहीं जाती। दो पल रुका, ये गीत अभी आप सुन रहे थे वीरजारा फिल्म से। श्रोताओं, हम आपको बताना चाहेंगे कि वीरजारा फिल्म 2004 में आई थी और इस फिल्म को 4 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। जी हाँ, सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए यश चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ कहानी के लिए आदित्य चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ संवाद के लिए भी आदित्य चोपड़ा को, और जी हाँ, जो ये गीत आपने सुना इसके गीतकार जावेद अख्तर को भी सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। तो वीरजारा फिल्म के इस गीत के बाद अब लीजिए सुनिए एक और बेहद ही खूबसूरत गीत राज फिल्म से। अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ें हैं, समीर के बोल, नदीम श्रमण का संगीत।

बादशाह। जी हाँ, बादशाह फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की युगल आवाज़ में। मनोज मुंतशिर के बोल थे, अभिजीत वाघानी का संगीत था। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका। तो गीत मालिका कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज़ में सुपर 30 फिल्म से लिया गया ये गीत, जिसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने है और संगीतबद्ध किया है अजय अतुल ने।

और इसी गीत के साथ गीतमाली का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। आइए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में।

0: परीक्षित साहनी के नाम से दोस्तों यूं तो हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिल्मों में प्रवेश के समय उनका फिल्मी नाम था अजय साहनी। परीक्षित से अजय बनने की कहानी आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: जब मैं अनोखी रात में काम कर रहा था तो संजीव ने कहा, यार मेरा नाम दरअसल है हरी भाई जरीवाला, और अगर मैं अपना नाम हरी भाई जरीवाला दूं स्क्रीन पे तो मैं 2 दिन नहीं चलूंगा। अगर तू ये नाम देगा तो तू नहीं चलेगा, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नहीं कर सकता। बंगाली में परीक्षित कहते हैं, पंजाबी में कुछ परीक्षित कहते हैं, यहाँ पे हिंदी वाले परीक्षित कहते हैं। ये नाम बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूँ आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ कि मुझे पिताजी ने ये नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहाँ पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। मतलब मेरे पिताजी और माताजी वहाँ काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा, अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
0: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
1: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पुणे में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्ती हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इंपॉर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो अशीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौट कर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादामुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तो गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर अशीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई। मनोखी रात में

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

0: दोस्तों, आज के फनकार थे फिल्म अभिनेता परीक्षित साहनी।
1: आज के फनकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रम्बन्नन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में

महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता

0: मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी उनकी 125 गृहमंत्री अमित शाह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 103.4 MHz पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन। इस कार्यक्रम के संकलन एवं वाचन कर रहे हैं अख्तर इमाम अंजुम।

घूमता माइक्रोफोन कार्यक्रम के सुनने वाले सभी श्रोता दोस्तों को अख्तर इमाम अंजुम का नमस्कार। दोस्तों, बीते इस पूरे सप्ताह आपने कई महत्वपूर्ण दिवस मनाए, जैसे राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस, गुरु हरगोविंद जयंती एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। आगे भी आप मनाएंगे विश्व जनसंख्या दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, आपराधिक न्याय दिवस एवं नेल्सन मंडेला दिवस। तो सबसे पहले हम सभी चिकित्सकों को चिकित्सा दिवस की शुभकामनाएं देते हैं एवं आशा करते हैं कि आपकी सेवाएं सभी के लिए लाभकारी हों। ये भी बता दें कि प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस इसलिए मनाया जाता है कि प्लास्टिक बैग के घातक पर्यावरणीय प्रभाव हैं, जिसके विकल्प के लिए हम सभी को जागरूक किया जाता है। आप दैनिक खरीदारी में कपड़े या जूट के थैलों का प्रयोग करें। ये भी जान लें कि विश्व में भारत की पहचान स्थापित करने का कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। हमारी भारत सरकार सहकार समृद्धि के दृष्टिकोण को बढ़ावा दे रही है, हमें उठाना है इसका लाभ। जनसंख्या मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना ही विश्व जनसंख्या दिवस का है मुख्य उद्देश्य। युवा दिवस तो आप जानते भी हैं कि आपके सम्मान, जिम्मेदारी, सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। आपराधिक न्याय ऐसी व्यवस्था है जिसका उद्देश्य समाज में कानून का शासन बनाए रखना है, अपराध रोकथाम, अपराधियों को दंडित करना, पीड़ित को न्याय दिलाना इसका मकसद है। यानी सभी दिवस या जयंती का कुछ ना कुछ है महत्व। इसी सप्ताह भारत में साहित्य का परचम बुलंद करने वाले जिला के प्रसिद्ध शायर जफर रिजवी काकवी की स्मृति में कवि सम्मेलन, सेमिनार एवं मुशायरा का भी आयोजन हुआ। जफर याबी अदब के तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरुचरण सिंह, जिसकी अध्यक्षता की गया से आए वयोवृद्ध शायर गुफरान अशरफी ने। मंच का संचालन आफताब राणा एवं खालिक परदेसी काबरी ने संयुक्त रूप से किया, जहां सासाराम के प्रसिद्ध कवियों के साथ बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों के कवि शायर उपस्थित हुए, जिसमें कुदरतुल्ला कुदरत, मुस्तफ़ा मुस्तर, डॉक्टर मेहताब आलम, डॉक्टर आफताब अथ

0: इकबाल दानिश, आलम परवेज, सरोज कुमार, पंकज अख्तर, इमाम अंजुम, शब्बीर सहसरामी, हसन इमाम, ज़िया सहसरामी, मुमताज़ फरीदी, मतीन सहसरामी, डॉक्टर एहतशाम समर, डॉक्टर तनवीर आलम ने अपनी कविता सुनाई एवं जफर रिजवी काकवी के संबंध में अपने बहुमूल्य विचार भी रखे, जहां श्रोताओं की भारी भीड़ जमा थी। मतीन सहस्रामी के सुने कुछ अंश।
1: क्या बात है।
0: मुख्य अतिथि डॉक्टर गुरुचरण सिंह ने कुछ यूं कहा।
2: सारे सिंगवे शिकायत भुला दीजिए, अरे आप काहू जरा मुस्कुरा दीजिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: सारे सिंगवे शिकायत भुला दीजिए,
1: आप काहू जरा मुस्कुरा दीजिए।
2: जरा मुस्कुरा दीजिए, आप उर्दू के हैं और हिंदी के हम, आप उर्दू के हैं और हिंदी के हम, अरे दोनों है हिंद भी, यह
1: बता दीजिए। क्या बात है, क्या।
0: खालिक परदेसी काबरी अपने अंदाज में।

0: हास्य कवि हसन इमाम अपने शेर के साथ।
1: चंदूल करिश्मा है या कोई भूल, मैं एक दिन सोच रहा था, मैं एक दिन सोच रहा था, कभी वो फूल की मैं हूँ बबूल, किया मुझे कैसे उसने कबूल, मैं एक दिन सोच रहा था।
0: आपका भाई अख्तर इमाम अंजुम अपनी प्रस्तुति के साथ।

0: वे क्या कहते हैं। पहले आकाशवाणी के श्रोता को आप अपना परिचय करा दीजिए, आपका नाम क्या है, किस पद पर हैं और कहां पदस्थापित हैं।
1: मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, मैं सदर अस्पताल सासाराम रोहतास में पदस्थापित हूं।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, ये तो सभी जानते हैं कि चिकित्सक दिवस मनाया गया, उस समय आप उल्लास के वातावरण में होंगे, तो आपको उत्साह था कि नहीं उस समय, और ये भी कि चूँकि आपके मान सम्मान के लिए ही चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, तो कुछ अप उसके बारे में पहले बता दें।
1: चिकित्सक दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं कि चिकित्सक का जो काम है सेवा, सेवा धर्म मुख्य जो हम लोग काम है सेवा करना है, मरीजों को देखभाल करना है, जो कष्ट और दुख के साथ जो मरीज आते हैं उनको अपने सेवा भाव से ठीक करके भेजना होता है।
0: तो चिकित्सक दिवस कब मनाया गया था?
1: 1 जुलाई को मनाया जाता
0: है। 1 जुलाई को, तो ये किस महान हस्ती की पुण्यतिथि एवं उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है?
1: ये डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो डॉक्टर थे पेशे से, उनके जन्म तिथि और मृत्यु तिथि दोनों ही 1 जुलाई को थी, इसलिए अच्छा, उन्हीं के जन्मोत्सव पर ये दिवस मनाया जाता है,
0: चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया था?
1: भारत में पहली बार राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1991 में शुरू हुई थी, 1 जुलाई 1991 से शुरू हुई है।
0: अच्छा, तो चिकित्सक क्षेत्र में आधुनिक चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है?
1: आधुनिक चिकित्सा के जनक हिप्पोक्रेट्स साहब को कहा जाता है, जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा पद्धति की शुरुआत की थी।
0: अच्छा अच्छा, तो वर्तमान में स्वास्थ्य स्थिति क्या है, हर किसी को जीवन शैली में बदलाव की भी आवश्यकता है, तो इस संबंध में आप कुछ बताइए।
1: जो आजकल के वातावरण है, माहौल जो हो गया, सब लोग अपने मुख्य काम से दूर होते जा रहा है और आराम तलबी हो गया है, अपने प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, जिसके चलते बीमारियों का दौर बढ़ना शुरू हो गया है। लेट से जगना, लेट से उठना, न सूर्योदय देखना, न सूर्यास्त देखना, न व्यायाम करना, न शुद्ध खाना पीना है, इसके चलते लोग काफ़ी बीमार हो रहे हैं और आकस्मिक मृत्यु भी हो रही है। ये सब कारण प्रकृति से दूर होने के चलते हो रहा है। पैदल चलना बंद हो गया, थोड़ी दूरी के लिए भी हम लोग मोटरसाइकिल लेते हैं या किसी ऑटो पर बैठ के चलते हैं। ये सब चीज़ों से बचना होगा, व्यायाम करना होगा, सरल तरीके से जीवन यापन करना होगा, तब जा कर के हम स्वस्थ रहेंगे और निरोग रहेंगे।
0: और समय अनुसार चिकित्सा भी आवश्यक
1: आवश्यक है।
0: तो मरीजों को ये भी देखा जाता है, कुछ दवाओं का कुछ दुष्प्रभाव भी होता है, तो उसके निवारण क्या क्या है?
1: देखिए, ये दवाई तो एक कहिएगा मेडिसिन के एक डिफिनेशन होता है, अपने आप में ये पॉइजन है। अगर हम उसके अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो वो पॉइजनस हो जाता है। अगर उसके जो लिमिट मात्रा बनाई गई उसका लाभ गुणकारी होता है, मतलब ठीक करता है, तो इसको हम लोग बैलेंस वे में काम करते हैं। कोई भी दवा का ओवरडोज ना हो, एक लिमिट डोज में उसका उपयोग किया जाए, तो वो
0: कोई चीज़ की भी ज्यादती जो है दुष्प्रभाव उसका पड़ना है, जैसे भोजन ही हम खाते हैं बहुत ओवर खा लिया
1: तो हो जाए।
0: तो ये भी बताइए कि मरीजों के बीमारी समस्या के निदान के लिए परीक्षण क्यों आवश्यक है?
1: देखिए, हर बीमारी के इलाज के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए कि बीमारी क्या है, उसको 3 तरीके होते हैं। एक होते हैं कि मेडिकल एग्जामिनेशन पहला, फिजिकल एग्जामिनेशन दूसरा, इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करके हम डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि बीमारी इनका एग्जैक्ट क्या है। हम क्लिनिकली उसके हिस्ट्री से एक आइडिया लगा लेते हैं, मरीज क्या बोला उसके हिसाब से हमने आइडिया लगा कि ये बीमारी हो सकती है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन हम इन्वेस्टिगेशन से करते हैं, जाँच से करते हैं। तो कोई भी बीमारी को डायग्नोसिस करने के लिए 3 चीज़ें, हिस्ट्री, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, उसकी जांच
0: आवश्यक
1: आवश्यक है।
0: तो इलाज के दौरान खान पान या गतिविधियों से परहेज करना है तो क्यों करना है, ये बता दीजिए।
1: क्योंकि उसे जल्दी रिकवरी मिलेगी, आपका बीमारी जल्दी ठीक होगा, इसके वजह से खान पान

0: परहेज किया जाता है और व्यायाम करने के लिए कहा, डिपेंड करता है किस तरह की बीमारी है उस हिसाब से उसको परहेज बताया जाता है, खान पान या एक्सरसाइज या जो भी उससे रिलेटेड है बीमारी के अनुसार ही एक परहेज बताए जाते हैं।
1: तो एक बात तो ये है कि डॉक्टर भगवान रूपी होते हैं, तो अच्छे डॉक्टर के जीवन का संपूर्ण उद्देश्य क्या है?
0: एक शब्द क्या है उसके लिए, सेवा, मानव सेवा। हम जितना जानते हैं उसको पूर्णतः अपने स्किल का अपने विद्या का उसको लाभ पहुंचाएं, उसकी सेवा करें, यही उद्देश्य होना चाहिए हर डॉक्टर्स को।
1: डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद एवं भरोसा क्यों आवश्यक है?
0: उसके संवाद होने से मरीजों को साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है, जल्दी ठीक होता है। नहीं, डॉक्टर साहब ने हमारा ध्यान दिया, हमें बढ़िया से इलाज किया, तो इसके चलते उसके दिमाग पर एक अनुभव होता है कि नहीं ना, डॉक्टर साहब ने अच्छे काम किए, इसलिए उसको जल्दी रिकवरी होती है।
1: एक डॉक्टर के रूप में आप अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं?
0: उसकी सेवा करना,
1: मतलब सेवा करना और आपके सामने जो मरीज आता है
0: उसको ठीक करना,
1: यही ताकत सबसे बड़ी होती है। तो आप कुछ ऐसे समय का वर्णन करें जब मरीज को बुरी खबर देनी पड़ती हो और उस स्थिति में आप अपने आप को कैसे संभालते?
0: देखिए, ये तो दुख होता ही है डॉक्टर का, इंसानियत के नाते कोई भी मरीज हमारा एक्सपायर कर जाता है या उसके जीवन जीवित रहने की संभावना कम रहती है, तो दुख तो हमें भी होता है, लेकिन डायरेक्ट उसको कहना थोड़ा और दुखी हो जाता है। तो इनडायरेक्टली हम लोग बोलते हैं कि ले जाओ घर, उसका सेवा करो, कुछ दिन सेवा कर लो, अब कुछ दिन के मेहमान है, इस तरह से उसके बातों को बदल।
1: मरीज के अटेंडेंट को,
0: अटेंडेंट को कहें, मरीज से तो कहना ही मुश्किल है। मरीज को जो एक महीना बाद अगर उसको होना होगा एक्सपायर तो वो तो तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए मरीज के अटेंडेंट को बोला जाता है कि घर ले जाइए, सेवा कीजिए।
1: वही बड़ी गंभीर परिस्थिति होती है
0: उसमें, डॉक्टर
1: प्रत्येक डॉक्टर के
0: लिए।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस बातचीत के बाद, आपने जो राय दी, तमाम श्रोता इसको सुन रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: दोस्तों। इस बातचीत के बाद आइए लेते हैं एक गीत का आनंद है।

दोस्तों, प्रस्तुत इस कार्यक्रम के बाद हम आपसे भी ये कहेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम घूमता माइक्रोफोन कैसा लगा। उठाइए कलम और लिख भेजिए एक पत्र, हमें रहेगी प्रतीक्षा आपके पत्र की। हमारा पता है घूमता माइक्रोफोन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी सासाराम, पिन कोड 821115, और दीजिए यहीं से अख्तर इमाम अंजुम को अनुमति। स्वर एवं संकलन अख्तर इमाम अंजुम, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।

घूमता माइक्रोफोन, अभी आप सुन रहे थे ये साप्ताहिक कार्यक्रम। संकलन एवं वाचन था अख्तर इमाम अंजुम का। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला प्रसारण बस थोड़ी ही देर में।

हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक माधुरी। लोक माधुरी कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सबसे पहले ये भोजपुरी एल्बम लोक गीत मुन्ना सिंह के स्वर में, जिसे लिखा है तोमर सत्येंद्र सिंह ने, संगीत दिया है मुन्ना सिंह ने और एल्बम का नाम है आधी आधी रतिया के।

गवनवा तू ले जा सैया। अभी आप सुन रहे थे मुन्ना सिंह के स्वर में, आधी आधी रतिया के एल्बम से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और अब लीजिए सुनिए भरत शर्मा व्यास के स्वर में राजा पिया जानी एल्बम से ये लोकगीत, जिसे लिखा कुंजन ने है और संगीत है भरत शर्मा व्यास का।

भरत शर्मा व्यास के गाए हुए इसी लोकगीत के साथ ही हमारा आज का यह लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:45 हो रहे हैं। रसधार कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कुछ भोजपुरी एल्बम लोक सॉन्ग। जी हाँ, सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं ये एल्बम लोकगीत भवानी माँ की आरती एल्बम से। वागीसा झा ने इसे गाया है, तरुण पांडे का संगीत है और लॉर्ड जी ने लिखा है।

वागीसा झां के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भवानी माँ की आरती। इस एल्बम से लिया गया ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और अब लीजिए सुनिए राहुल रौनक की आवाज़ में शिव आधार जोगरी का लिखा हुआ एक एल्बम लोकगीत, जिसे संगीतबद्ध किया है संजय रावत पंपी ने और एल्बम है चले लू झमका के।

बहुत पंपी का संगीत था और एल्बम था चले लू झमका की। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और रसधार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। चलिए कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं प्रवीण मिश्रा बुलबुल। जी हाँ, प्रवीण मिश्रा बुलबुल जी का लिखा हुआ और इन्हीं की आवाज़ में मनोज बंटी के संगीत निर्देशन में समैया केहू के ना छोड़ लेबा इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग।

चलब झमका के। जी हाँ, ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे राहुल रौनक के स्वर में। शिव आधार जोगरी ने इसे लिखा था, संजय।

समैया केहू के ना छोड़ लेबा भैया। इस एल्बम का ये टाइटल एल्बम सॉन्ग अभी आप सुन रहे थे प्रवीण मिश्रा बुलबुल के स्वर में। और अब इसी के साथ हमारा आज का रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाहन के 11 बजने वाले हैं। आइए चलते हैं आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र कार्यक्रम रंग तरंग के लिए। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, जुड़े रहिए हमसे।

0: पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि सहकार से समृद्धि लक्ष्य के तहत इस समारोह का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह कई प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदाम का उद्घाटन, सहकार वन तथा टिश्यू कल्चर केंद्र का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस के तीसरे चरण की शुरुआत और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरण में सुधार किए जाएंगे। कर्मचारियों को मतदाता विवरण, नई तस्वीर, ईपीआईसी कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र साथ लाना होगा। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन

रहा है। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। फीफा में 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। फीफा विश्व कप के

साथ साथ फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में आप सुन रहे थे उर्दू गजल मॉडर्न। इस एल्बम से ये गजल जिसे लिखा ताहिर फराज रामपुरी ने और बेनी का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोल आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद का संगीत दीवाना एल्बम के इस गीत में और कार्यक्रम रंग तरंग विभिन्न भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन को ब्रेथलेस में।

0: सिर्फ आंसू है उम्मीद सिर्फ दर्द की रंज की बात है और फरियादे है मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर महादेवन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग में अब सुनिए ये गीत।

0: कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार।

0: शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: गणेश हेगड़े की आवाज में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत, जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

दर्दी रब रब इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को। जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस 2 मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरण दीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई और मलसिया वासुदेवन की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से

0: भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज़ में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और आप समझ गए होंगे, यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: मुकेश की आवाज में आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे इंद्रवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

0: बिक जाए हल।
1: मैं क्या सोचती,
0: चाहे बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लट

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: किशोर कुमार और आरती मुखर्जी की आवाजों में आप सुन रहे थे एमजी हशमत के बोल। रविंद्र जैन का संगीत तपस्या फिल्म के इस गीत में आपने सुना।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
3: हर तरफ अब

हिंदुस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और अब हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म से गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ही रांझा फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अब हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों से।

मोहम्मद रफी, भूपिंदर, मन्ना डे और तलत महमूद की आवाजों में हकीकत फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में समय हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीत से। आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

हस्ते जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। सुरीला सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, रोजाना हम एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट करते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, और उसी में छिपे होते हैं वो शब्द जिनसे कार्यक्रम में गीत शामिल होते हैं, जिनसे संबंधित जो भी गीत होते हैं वही हम कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और उस टेक्स्ट या इबारत को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना होता है कि कौन कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे

शामिल होंगे और आप अपनी बातें भी हम तक पहुंचाते हैं कमेंट्स के जरिए। तो हमारे जो भी श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बता दें www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप ये हमारा पेज पा सकते हैं और वहां पर आप को सारी पोस्ट मिल जाएंगी और भी जो भी कार्यक्रम आते हैं विविध भारती की उन सभी की पोस्ट भी आपको वहां मिलती है और कार्यक्रम का विवरण भी आपको वहां मिल जाएगा झरोखा के अंतर्गत। तो इस तरह से आप हमारे पेज से जुड़ सकते हैं और जो साथी फेसबुक पर ही हैं जिनका अकाउंट है वो फेसबुक पर भी सर्च कर सकते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देवनागरी में लिखा यानी हिंदी में लिखा हुआ है और आपको मिल जाएगा ये पेज। और अभी हम आपको बता देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की इबारत क्या है। तो आज की इबारत है चलते चलते इस जीवन में कई रास्ते खुलते जाते हैं, चलते हुए हम किसी से दूर भी होते हैं और किसी के पास भी खींचे जाते हैं। हमारे पांव की सुंदरता भी तो चलते जाने में है क्योंकि रुकना नहीं चलना ही नियति है। अगर हम रुक जाएं या अगर हम रुके तो ये समय ही चला जाएगा, वक्त जो ये गया हाथ से फिर कहां कोई इसे पाएगा। दो चार कदम आप चले और कुछ हम भी चलकर पहुंचे आप तक। देखिए चलते चलते आपकी और हमारी मुलाकात हो गई इस सुरीले मोड़ पर। तो ये है आज की इबारत जिनसे शब्द आप चुन सकते हैं जिनसे आज के कार्यक्रम में गीत शामिल होंगे। अब देखते हैं कि आपकी गीतों की लिस्ट और हमारी गीतों की लिस्ट कितनी मैच करती है। हमारे एक साथी ने लिख भेजा है कि आज की इबारत पढ़कर शिव मंगल सिंह सुमन की कविता की पंक्तियां याद आ गई। गति प्रबल पैरों में भरी फिर क्यों रहूं दूर दूर खड़ा, जब आज मेरे सामने है इतना रास्ता पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। वैसे तो मैं हर रोज शाम को चलने जाता हूँ लेकिन आज सुबह बाय कार सूरत से धोराजी की ओर चल पड़ा हूँ। चलते चलते मेरे नहीं सुमन जी के गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना, ऐसा हमारे साथी का कहना है। तो हम ये जानना चाहते कि भाई चलना तो वाकई जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चलना जो सांकेतिक रूप में है वो जीवन चलने का नाम जैसे गीतों में हमें समझ में आता ही है, लेकिन पहली बार किसी को चलना सिखाना यानी किसी बच्चे को जब हम चलना सिखाते हैं तो बड़ा ही प्यारा सा लगता है ये काम। और जब वो चलना सीख जाता है तो वो रुकता ही नहीं है, बहुत देर तक तो सिर्फ चलता ही रहता है। तो आपने क्या किया है ऐसा प्यारा काम, किसी छोटे बच्चे को चलना सिखाया है या आपको किसने चलना सिखाया, ये भी आप हमें बता सकते हैं। और कार्यक्रम में चलते हैं पहले गीत की ओर, बताना है किस फिल्म का गीत है।

पाकिजा फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, कैफे आजमी के बोल गुलाम मोहम्मद का संगीत। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने लिख भेजा है सही जवाब और ये भी कहा है कि उनके लिस्ट में तो ये गीत था ही। और ये जानकर हमें बड़ी खुशी है कि आपके लिस्ट और हमारी लिस्ट पहले गीत में ही मिल गई है। आगे ज़रूर देखा जाएगा कि कौन कौन से गीत आपके लिस्ट में से शामिल होते हैं आज के इस कार्यक्रम में। वहीं हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि आज का गद्यांश जीवन में चलते रहने की बात लेकर आया है। जीवन का वास्तविक आकर्षण उसकी गतिशीलता में छिपा है। चलते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें या दुख को महसूस ना करें, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि हम किसी भी पड़ाव पर ठहरे नहीं। चलते रहने की इस कला में धैर्य, आशा और स्वयं पर विश्वास सबसे बड़ा संबल है। आगे बढ़ते रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है स्वीकार्यता। वहीं हमारे एक और साथी ने लिखा है कि आज के सफर के मर्म को चरितार्थ करती भारत है। संस्कृत में चरैवेति चरैवेति यानी चलते रहो श्लोक की वास्तविकता है। बहता पानी रमता योगी, ठहर जाए तो विकार अवश्यंभावी है। जीवन सफर में चलते रहने वालों की ही प्रगति पथ प्रशस्त रहती है और अंततः लक्ष्य हासिल होता है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि सफर जिंदगी का ये कारवां यूं ही चलता रहा, जहां कुछ लोग दूर छूट जाते हैं और कुछ दिल के पास आ जाते हैं। कदमों की खूबसूरती भी ठहरने में नहीं बल्कि लगातार चलते रहने में ही है। जो रुक गए हम तो ये कीमती वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाएगा, जो फिर कभी लौट कर नहीं आता। कुछ कदम आप चले, कुछ दूरी हमने तय की और इस तरह हमारी मुलाकात हो गई। हमारी कौर साथी का कहना है, चलते रहना नियति है और गुजरा वक्त अक्सर दोबारा कभी भी नहीं मिल सकता। जीवन का कटु और शाश्वत सत्य गतिशीलता ही है। से कर्मयोग, काल निरंतरता और पुरुषार्थ के रूप में गहराई से

जाने की जरूरत है। दूसरे गहन अर्थ में जीवन बहती नदियों सा या किसी चक्र जैसा है, जैसा कि इन दोनों से यही ज्ञान मिल रहा है कि निरंतर गतिशील रहने में ही उनका असर बरकरार रहता है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि चलते चलते हम किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां हमारा मन करता है कि कुछ देर के लिए ठहर जाए। क्या ऐसी कोई जगह या कोई ऐसा समय आपके जीवन में आया, हमें बताइए। और ये भी बताइए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिसमें आपको लगा कि भाई इनके साथ कुछ देर ठहर जाना चाहिए। तो आप हमें बताइए कि रुकने का मन कब किया आपका। और साथ ही हम नहीं रुक रहे हैं, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आपको बताना है कि किसकी आवाज में गीत, कौन से फन से।

मोहम्मद रफी की आवाज में हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, और हमारे साथी कहते हैं कि गीत ही जीवन का आधार है, माफ कीजिएगा गति ही जीवन का आधार है, ठहराव तो बस एक हार है, संघर्षों से ही निखरता इस जीवन का श्रृंगार है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जो कदम बढ़ाते रहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो लहरों से टकराते रहते हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि चलना ही जीवन का दूसरा नाम है, अब जब आपके कदम सही दिशा में उठते हैं तो चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, आपकी निरंतर मेहनत और सही दिशा उसे सच कर देती है। सफलता हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि आप रुकने के बजाय कितनी लगन से अपने रास्तों पर आगे बढ़ते गए। हमारे एक और साथी ने लिख भेजा है कि कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, उसने कहा दो कदम तुम भी चलो दो कदम हम भी चलें, मंजिलें प्यार की होंगी तय चलते चलते, तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रही है जिंदगी, ऐसा इन्होंने लिखा। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि सफर में चलते ही तो जाना है, जीवन का नाम ही चलना है, जहां रुके वहीं सांसें रुक जाएंगी, हंसते मुस्कुराते जीवन के सुख दुख को भी चलते रहेंगे तो जीवन

में सामंजस्य बना रहेगा, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ये गीत इन्होंने लिखा और साथ ही बहुत सारे गीत भी इन्होंने लिखे। एक और साथी लिखती हैं कि सचमुच जीवन आज फिर एक बार आपके साथ चलने का भाग्य मिल गया। सचमुच जीवन में हर घड़ी चलते रहने का बड़ा महत्व है। निरंतर चलते रहने से हर मुश्किलें और असफलता का डटकर सामना करने का दृढ़ मनोबल पाते हैं। नई संभावनाओं को अपनाकर पुरानी बातें छोड़कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसी अर्थ का एक सुंदर मराठी कविता याद आ रही है, कायदा पाड़ा गतीचा काल मागे लागला थांबला तो संपला धावत्याला शक्ति यही आणी रस्ता साफ पड़े। आज की भारत बहुत प्रेरणादायी, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, ये मार्गदर्शक संदेश दे रही है। हम तो अपने साथी से कहेंगे कि जो भी वो दूसरी भाषा में लिखकर भेजते हैं कुछ कविताएं, तो उसका अर्थ भी जरूर लिख दें ताकि सभी को पूरी तरह से समझ में आ जाए। और अब कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं, लेकिन एक और बात हमारे साथियों ने कहा कि चलते चलते सफलता मिलती है, चलते चलते रास्ते मिलते हैं। लेकिन ये सोचिए कि मान लीजिए हमें सफलता मिल गई और चलते चलते कहीं किसी मार्ग पर कहीं रास्ते में हमें असफलता का सामना करना पड़ा, तो कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। फिल्म का नाम और नायिका कौन है बताइए।

अनामिका फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, और इस फिल्म में नजर आती है नायिका के रूप में जया भादुड़ी। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु के आगमन से शिष्य श्यामल बनी प्रकृति के सुंदर प्रसन्न सुहाने नजारे को देखकर दिल कहता है रुक जा रे रुक जा। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है, कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है, समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं, हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूं। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूं। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है, ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है, और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, मंजिल मिले या ना मिले हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ बताता है। वही हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक 3 पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे एक साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की 3 पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे एक साथी का कहना है, और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है, चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है, जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है, तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरत है, खूबसूरती से ज्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पांव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहां, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी। यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफर के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफर बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ निरंतर चलता रहता है और अंत में उसकी जीत होती है। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या आप अपने जीवन में किसी व्यक्ति को रोकना चाहते हैं ज्यादा देर और चाहते हैं कि कुछ पल ऐसा निकले जिसमें समय न बीते और बातें चलती रहें। तो हमें बताइए कौन है वैसा व्यक्ति, और ये भी बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत सुनवा रहे हैं।

उदित नारायण और साथियों की आवाज में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत सी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारी इबारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियां किसी कार्यक्रम में इसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नजारे को या किसी दर्शनीय स्थल को, और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हो तो हमें से साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है, उम्र के उत्तरार्ध में पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप ऐसा।

कहते हैं हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिट आए ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊंचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनकी उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूँ, सारी बात समझाता हूँ और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूँ कि आपके बिना मैं अधूरा हूँ। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि एक गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहां पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वही हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपनी अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफर बन जाता है। वैसे हमारे एक साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी, वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हो गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफर मिला वो जीवन में हम सफर बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक, 5 तो कम से कम चलते ही है। और एक साथी कह रहे हैं कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नायग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को? भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाजत दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफर में रखती है। हमारी और साथी कह रहे हैं कि गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वहां के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही

टाइम जो मिलता था। लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं, और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वही हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कौन सा मुश्किल सवाल होना

चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चौमुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊंचा है कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। एक और साथी कहती हैं कि मैं रोज स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनके बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो हमने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बैक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने कि मैंने मेरी दीदी की छोटी सी लड़की को बहुत चलाया जब वो 1-2 साल की थी। हमने किसके चलना सिखाया? हमारे चलते बोलते रहने के तब की गुरु तब माँ ही थी। माँ ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। जब बच्चे अचानक उठने की कोशिश करने लगते हैं तो माँ को ये समझ में आ जाता है कि वो चलना चाहते हैं और धीरे धीरे वो उन्हें पकड़कर चलना सिखा देती हैं। एक साथी कह रहे हैं कि समय और बादल के अलावा कोई ईमानदारी से नहीं चलता। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंतर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहना जरूरी है। वैसे तो चलते चलते रहने के बहुत से गीत हैं, कुछ याद आ रहे हैं। इन्होंने गीतों के नाम लिख भेजे हैं, हमें पूरी उम्मीद है उसमें से कुछ गीत तो शामिल हो ही गए। अब कार्यक्रम का अंतिम गीत, हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत, किसकी आवाज़।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। यह शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं है। शिविर में चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी।

0: आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट के लिए जन स्वराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा और अन्य दलों की ओर से जल्द ही प्रत्याशी के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखूभाई तलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा इस महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बेहिया पीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 327C पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

ये आकाशवाणी पटना है। अब आप शरफुल हुदा से इलाकाई खबरें सुनिए। रियासती हुकूमत अब आम लोगों की शिकायतों के फौरी हल के लिए हर एक माह के दूसरे मंगल को पटना में रियासत सतही सहयोग शिविर मुनाकिद करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट अहाता वाक़े संवाद भवन में होगी। ये खसूसी शिविर उन दरख्वास्त दहिंदों के लिए होगा जो ज़िला सतह पर मुनाकिद सहयोग प्रोग्राम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद मसले के हल से मुतमईन नहीं हैं। शिविर में मुंतखब दरख्वास्त दहिंदों की शिकायतों का जायज़ा वज़ीर आला सतह पर लिया जाएगा। दरख्वास्त सहयोग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन की जा सकेगी। दरख्वास्त दहिंदा अपने पहले से दर्ज दरख्वास्त के हवाला नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी कंफर्म करके दरख्वास्त का अमल पूरा कर सकते हैं। मुंतखब दरख्वास्त गुजार को शिविर की तारीख, वक्त और दूसरी ज़रूरी मालूमात एसएमएस के तवसुत से भेजी जाएगी। मज़ीद मालूमात हेल्पलाइन नंबर

जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे भर्ती बोर्ड टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। एक बार और सुन लें। उम्मीदवार के पास बीई, बीटेक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में बीएसएससी की डिग्री होनी चाहिए। इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पुलिस अवर निरीक्षक के कुल 150 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक

0: पुविष पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रेमबनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
3: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है।

0: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: जगन्नाथ तकानेन।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जगन्नाथ तकानेन।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
5: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी

0: उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: परिया ओ सवरिया ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ।

लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय

0: विविध भारती पर राडी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहाँ पर गर्मी पड़ रही है वहाँ पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज़ से दीपा की आवाज़ से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार
0: है? बिल्कुल। और यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहाँ चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं।
1: बिल्कुल है ना? बहुत ज़रूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे वर्षा का तो ज़्यादा ठीक है
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ और... पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़ी दिन सांस ले लें दो हमको थोड़ा धूप हमें भी दे दो ऐसी हालत
0: कुछ
1: हो गई
0: ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे। तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल। और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात क्योंकि दीपा आ गई मंजरी आ गई है तो कुछ ना कुछ
0: कैसे
1: तो बनेगा
0: नहीं हो कि
1: है ना?
0: बातें
1: बिल्कुल
0: भोजन पान की होगी।
1: होगी बिल्कुल क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का है ना?
0: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना इस मौसम में ऐसी कुछ चीज़ें चटपटी और कुछ तली भुनी चीज़ों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं
1: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल
1: और
0: लेना भी चाहिए।
1: लेना भी चाहिए। और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे अगला विषय मेरा है वन महोत्सव। तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
0: जी
1: में कहानी का दिन है तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
0: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक।
1: जी
0: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है। शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं। घर में जो आपके काम करते हैं जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं। स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू
1: बढ़
0: होने लगी
1: जाती है कि भाई अब बजट बनाएं फालतू खर्चा नहीं
0: क्या
1: करें।
0: हो रहा है क्या नहीं हो
1: हाँ
0: रहा है।
1: बिल्कुल। अब कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ अभी
0: हाँ
1: नहीं।
0: सही बात है।
1: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती हैं। हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है, और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां
0: सब
1: पहनेंगे,
0: होगा, सब होगा मंजरी। लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी,
1: कथा सुधा।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक स्तर के हैं, उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत होती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसमें प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें, आज इस कहानी की पहली कड़ी।
4: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे

0: राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है।
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बददुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है। मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर, तेरा शौहर अब बीए में होगा? हाँ
2: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
0: वो तो है भाई।
2: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते?
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज़्यादा हकीकत नहीं है। वहाँ तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज़्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
0: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: राम दुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
2: बहन तुम यहाँ गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
0: अच्छा,
2: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है, अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती, आसान काम नहीं है।
0: वो तो है भाई।
2: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है, बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कल्ब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी न पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो जवान न निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर हैं मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
0: सही कहती हो।
1: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
0: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूँ, तमीजदार हूँ, किफायत शियार हूँ, अपने शौहर पर जान देती हूँ, बच्चों को जान से अजीज समझती हूँ।

0: इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तनपरवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है बाकी, शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
1: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
0: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हाँ
2: 1,000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
0: हाँ ऐसे ही कोई आँख का अंधा मालिक बन गया होगा।
2: बहन व्यापारी आँख के अंधे नहीं होते। हाँ जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
1: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
0: हाँ वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
2: अरे इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
5: बिल्कुल।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: तो दीपा, अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और बात करते हैं बचत के ऊपर।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है
0: दीपा,
1: भाई।
0: बचत करने से पहले हम एक उसी का ही कमेंट है वो उठा लेते हैं। हमारे साथ ही लिखते हैं कि बचत हम दोनों ने अपनी बेटियों और बेटों को अजमेर शहर के बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ाया, बहुत ही महंगी शिक्षा थी, तो हमें और बच्चों को भी शुरुआत से ही हाथ टाइट करके बचत करना अनिवार्य हो गया था। कभी बेटों को जब मैं स्वयं ही स्कूल की छुट्टी के बाद लाता और ये कहता कि कचौरी खा लो, तो बेटे कहते पापा जी खर्चा नहीं करना है, वैसे ही घर पहुंचकर भोजन करेंगे। ये सुनकर खुशी के मतलब उनकी आंखें जो हैं वो नम हो जाया करती थी और कहते मेरा मन सोचता था कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर बच्चे समझने लग जाएं कि हमें कहाँ पे खर्चा करना है कहाँ पर नहीं करना है, तो समझ लो कि माता पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं, तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एनजाइटी, टेंशन,
0: बिल्कुल
1: ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी ख़त्म हो क्यों जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: होता है ना ऐसा।
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है, और बचत को टालने की आदत यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर

0: हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो ज़रूर बताते चलिएगा।
1: बिल्कुल, और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय करने से कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब
0: बिल्कुल
1: आप सैलरी लेकर आएँ तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
0: हाँ,
1: है ना,
0: इस तरह से भी
1: इस तरह
0: कर
1: से
0: सकते
1: बचत
0: हैं
1: कर
0: बिल्कुल।
1: सकते हैं।
0: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए ज़रूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांट कर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 30, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग
1: हाँ,
0: अलग रख
1: वो भी
0: के
1: रख
0: ये
1: सकते
0: भी
1: हैं
0: करके हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है, और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम
0: बिल्कुल।
1: कटौती करते हैं। और दीपा, एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
0: बिल्कुल।
1: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज़्यादा किया है, तो उस चीज़ को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं कि
0: हटा
1: नहीं भाई, ये
0: सकते
1: हमारे
0: हैं
1: लिए
0: जी
1: आवश्यक नहीं है।
0: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम ज़रूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है करना
1: करना
0: बहुत
1: बहुत
0: मुश्किल होता है,
1: मुश्किल होता है।
0: लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या
1: क्या
0: नहीं करें,
1: करें,
0: और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किससे मदद मांगे, किसको बोलें कि हमें थोड़ा सा पैसा पैसे की ज़रूरत है, तो
1: बिल्कुल
0: आप प्लीज़ हमें कुछ हेल्प करेंगे क्या। तो इस तरह की स्थिति हमारे सामने आने से हम बच जाएंगे।
1: बच जाएंगे। और दीपा देखो, पहले के समय में ऐसा होता था ना, महिलाएं जो हैं दादी नानी काकी लोग, इनको देखो तुम अलमारी के पेपर के नीचे पैसे रख देती थी, या अपनी साड़ी के फलाने साड़ी के पल्लू में बांध के रख दिए, या अलमारी के अंदर उन्होंने एक छोटी सी डिब्बा रख दी, तो वो हर जगह थोड़े थोड़े पैसे रखती थी, और मुसीबत के समय वही पैसे उनके काम आते थे। तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए, इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की से शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप
0: बिल्कुल।
1: गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड की भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ ज़रूरी चीज़ों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज़ जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये ख़रीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतज़ार करिए, उसके बाद ही उसे ख़रीदने की सोचें। देखिए आवेग में आकर के बहुत चीज़ हम ऐसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है,
1: अब
0: अगले
1: किसी
0: महीने ले
1: किसी
0: लेंगे।
1: की आदत होती है दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती, तो नहीं लगता है मतलब पैसे वाले की, अब कुछ कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता
0: बिल्कुल।
1: है
0: तो उन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप
1: जी,
0: रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज़ जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग
1: ऑनलाइन
0: ना
1: नहीं,
0: करिएगा,
1: बिल्कुल
0: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा,
1: बिल्कुल,
0: 12 घंटे के बाद
1: या
0: आपके मन
1: अभी
0: में वो जो
1: जी
0: उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल कम
1: शांत
0: हो
1: हो जाएगा।
0: जाएगा।
1: और जब खरीदने का मन भी करे तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, तो
0: बिल्कुल।
1: इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं।

0: या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें
0: जी
1: कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो ये सब भी आपका, इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
0: बिल्कुल
1: बजट में शामिल करके रखना ज़रूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है। शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा। सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे ज़रूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं। मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह। फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयाँ। इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देख कर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना
0: जी
1: दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर। हाँ। तो हमारे साथी लिखती हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के ज़माने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज़्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी ज़रूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकाल कर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा, माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है?
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है। और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर्सत उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल रखी है। और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहाँ की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहाँ पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना,
0: बिल्कुल
1: तो बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से दिखती
1: है, कोई बड़े खुरदुरे भी होते हैं कि उंगली लगाओ तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई देखो कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है, तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए। इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर K.M. मुंशी इनके द्वारा हुई थी, तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु, ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु, पशु

0: पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती हैं।
1: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल, और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: चोरी हो चोरी काली पलक पिया मूरी।
1: ऐसे ही जो काली काली घटाएं है ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखारानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
2: बिल्कुल, हमारे साथी लिखते हैं दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहाँ पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम जामुन अमरूद नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियाँ शहद फल जामुन आंवला बेल आदि, मेवे मशरूम बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद लाख राल ये सब चीज़ें इन सब में, घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहाँ पर जीव जंतु हैं पशु पक्षी वो सब वहाँ पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से उसको जो है रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
1: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़ें?
2: कोई भी पढ़ सकता है,
1: पढ़िए आप पढ़िए।
2: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं छोले भटूरे की रेसिपी, 2 कप काबुली चने रात भर भिगोए हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, 1/2 चम्मच छोला मसाला लेना है इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल

0: लें। एक कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूनें, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए। अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं। अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा, इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी। तलने के लिए तेल लेना है आपको। मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं। दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें। आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें। छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो, और गर्म तेल में मध्यम तेज आँच पर गर्म तेल करें, और मध्यम तेज आँच होनी चाहिए। और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा सुनहरा तल लें, और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं। और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ चूल्हे के संग में परोसें।
1: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन चलने से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जब हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियाँ साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियाँ और जंगली पत्तों पर बैठकर प्रेम से भोजन

0: करते थे इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है ना।
1: बिल्कुल। तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से
0: जी,
1: ध्यान रखिएगा।
0: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से। तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: और दीपा माहेश्वरी का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

0: सेहत नमा कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर को। इनसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह और ये है कार्यक्रम सेहत नामा। दोस्तों स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और जब बात महिलाओं के स्वास्थ्य की हो तो जागरूकता और सही जानकारी बेहद जरूरी हो जाती है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर महिला के जीवन से जुड़ा है। महिलाओं का स्वास्थ्य, हार्मोनल बदलाव, PCOD, प्रजनन स्वास्थ्य और आधुनिक जीवन शैली का प्रभाव। तो इन महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर जो नासिक से आई हैं। डॉक्टर आशा लता देवलीकर जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार। थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत ज़रूरी है, वो है PCOD। ये PCOD क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी PCOD यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। और PCOD क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज़्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। PCOD के दो है, PCOD और PCOS।

0: पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज, और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज़्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है, ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें, खतरा क्या है?
0: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है, फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल इम्बैलेंस?
0: पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी, तो इसका बहुत ज़्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है, और ज़्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा दिखता है
1: जी।
0: ये जो डिसीज़ है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज़ है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
0: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है, और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और रेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं, पीरियड्स
0: हाँ।
1: नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या
0: हाँ।
1: हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी, तो इसका क्या इलाज है?
0: हाँ, तो इसके लक्षण ही बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना, और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाना, कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं, और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिम्पल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
0: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं, और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड, वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
0: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस, पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
0: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम एक्सरसाइज, इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है, और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
0: अच्छा, एक प्यार का नगमा,
1: एक प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: इस गाने के बाद डॉक्टर आशा लता, आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है,
1: इम्बैलेंस है।
0: असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता
1: हो
0: है।
1: जाता है।
0: तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। पहले जांच पद्धति बताइए,
1: हाँ,
0: किस तरह से
1: तो
0: ट्रीटमेंट
1: जब
0: उसको।
1: इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज़ करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओलेशन स्टडी। कि ओलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज़ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, PP, और उसमें कुछ आ गया 120 110 120 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: और मेल पार्टनर में हम सीमेन काउंट, सीमेन एनालिसिस वो करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफ़ी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी की जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है। उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है, तो क्या
1: हाँ,
0: उस
1: वो
0: समय।
1: थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी, IVF या IUI एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है

0: जिसे पुराने ज़माने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, टेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
1: जी।
0: तो वो सब ठीक है। अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज़्यादा दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ रहा है तो आगे चल के उनको लैप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
1: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं PCOD और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब PCOD का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है कई बार, कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
0: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज़्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
1: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
0: USG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
1: जी,
0: सोनोग्राफी तो, एक ही माध्यम है उसको
1: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
0: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
1: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
0: अजीब दास्ता
1: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज़ है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो, और क्या-क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती,
1: हाँ,
0: छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है इसमें, उसको नज़रअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज़्यादा,
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे, जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली, जब वो अच्छे से समझाते हैं तादा का इधर ही हो जाता है
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: मुझे लगता है।
0: जी
1: और डीप ब्रीदिंग, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस ज़माने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है।
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए? किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते
0: 35%।
1: हैं। हाँ, तो डाइट में, डाइट ही बहुत ज़रूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत ज़रूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज़्ज़ा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800 2000 तक कैलोरीज,
0: जी
1: और बच्चियाँ लड़कियाँ खाती है 4000 5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाई आलमंड, वाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शीरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियाँ बहुत ज़रूरी है,
0: जी
1: जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियाँ से भी 25% तक पीसीओडी या वुमेन हेल्थ

0: कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद। पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीज़ें, राइस जैसे
1: जी,
0: हाँ। और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो। तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना ज़रूरी है, हम उनको बोलते हैं, जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो
1: जी,
0: गया, विटामिन डी,
1: और विटामिन डी धूप से मिलता है,
0: सनलाइट,
1: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
0: बहुत कमी है।
1: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना।
0: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है।
1: तो ठीक है, ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है,
1: डाइट का
0: तो
1: बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और
1: और
0: क्या क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी?
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते?
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना
1: नॉइस, हाँ,
0: चाहिए,
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के
1: फैटी,
0: लिए मुश्किल है।
1: हाँ, ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी।
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर एक बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस,
1: हाँ,
0: कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: उनको। हाँ, तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इंटेक कीजिए।
0: जब अगर
1: हाँ,
0: शक्कर
1: खजूर,
0: छोड़ें तो फल जरूर
1: हाँ,
0: खाएं।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ।
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है।
0: मीठा वो
1: और
0: भी है,
1: मीठा,
0: नुकसानदेह
1: हाँ,
0: भी है।
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है। और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते
1: खा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और PCOD जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ, क्रॉनिक,
0: तो उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ,
0: निजात पाए,
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता
0: पाए?
1: है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट
0: जी
1: की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो, या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना
1: चलिए,
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं। जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर, टीनेज पर, 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं, मासिक धर्म। लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी
0: कहिए
1: जो
0: आप।
1: है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है।
0: जल्दी आ
1: हाँ,
0: जाता है
1: जल्दी
0: पीरियड।
1: आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12th से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज़्यादा डरने की चीज़ है, डरने की चीज़
0: तो
1: तो
0: क्या
1: क्यों,
0: वजह है इसकी?
1: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
0: ओ
1: हाँ, कोक, ये वो सब। मोटी होती है बच्ची, ध्यान नहीं देते, खाती है खाती है। और जब जितना अर्लियर मेनार्क स्टार्ट हो गया, जितना अर्लियर तुमको पीरियड स्टार्ट हो गए, उतना पीसीओडी का खतरा बढ़ता है। और अभी पीरियड्स कैसे स्टार्ट होते हैं, क्या होते हैं, यूटेरस क्या चीज़ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है।
0: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन
1: हाँ,
0: जाता है, तो
1: गर्भाशय में
0: हाँ,
1: सिस्ट
0: तो
1: बन जाता है,
0: ये क्या
1: तो
0: समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
1: गर्भाशय रहता गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएँ रहती है, और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, थर्टी
0: जी
1: ट्वेंटी एट थर्टी, तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, इसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर न आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है।

0: और बाहर न आने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवाओं
0: वो
1: से क्या
0: सिस्ट
1: होता
0: तो नेचुरल सिस्ट मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट एक्सरसाइज पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से सर्जिकल प्रोसेस है
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो,
1: सुरमई अखियों में
0: नन्ना मुन्ना
1: एक
0: सपना
1: सपना दे जा रहा, सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर, हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जिसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो, तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफ़र होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देख के ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं। लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ, डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को, नहीं पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज़्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओवम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो प्रेग्नेंटली,
1: हाँ, सिर बीच, हाँ, उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो ट्रांसफर करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ, पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर। फर्स्ट तो इंजेक्शंस, मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में।
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता
1: है? एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा, कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं, अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी जी। तो पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ, होती है। पीसीओडी में पीरियड्स ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है
0: जी,
1: ये भी होता है
0: जी। तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी और...
1: हाँ, नींद की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: हो
0: है।
1: जाती है स्कैंट,
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ खतरा होता है?
1: हाँ, यूटेरस

0: कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद
1: जी,
0: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा।
1: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे
0: वैक्सीन
1: निजात?
0: उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना है ये पता नहीं है।
1: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
0: हाँ,
1: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
0: डर
1: ऐसा
0: पैदा है,
1: कहाँ तक सच्चाई है इसमें?
0: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
1: जी
0: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
1: जी
0: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
1: मतलब पानी,
0: सिस्टिक
1: हाँ
0: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है
1: यूरिन के रास्ते से सफेद
0: यूरिन
1: पानी
0: के।
1: आता है ऐसा?
0: हाँ वो अलग चीज़ है, यूरिन के रास्ते जो सफ़ेद पानी है तो वाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
1: जी, तो
0: हाँ
1: उसका क्या इलाज है?
0: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
1: जी, तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
0: ये रात भीगी भीगी
1: ये रात
0: नरगिस,
1: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
0: हाँ
1: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को, महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर,
0: हाँ
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं। हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेज़र कर देते हैं मशीन से, हेयर लेज़र रिमूवल, वो भी
0: जी
1: बहुत अच्छी एक है।
0: जी जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?

0: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है
1: जी। तो इसका इलाज क्या है?
0: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
1: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
0: हाँ, इसका परीक्षण सेल्फ परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल्म ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल्फ परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
1: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
0: मेमोग्राफी कर
1: तो
0: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, एपएनएससी, नीडल बायोप्सी।
1: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
0: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
1: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
0: मूड
1: होता है,
0: होते हैं।
1: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
0: मेंटल स्ट्रेस।
1: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
0: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है वो। इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
1: जी,
0: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
1: जी,
0: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज़ तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज है कुछ, उस पर ध्यान दो।
1: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
0: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से
1: जी। कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
0: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनार, मेनोपॉज ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्क है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब बाहर निकलने के लिए। पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज़ है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है। पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक जीवन शैली।
1: डॉक्टर आशा लता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशा लता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: शाम के 5 को है कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
5: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच

बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्वकप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन की प्रस्तुति होगी शाम 5:30 पर। शाम 6:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत। रोज़ की तरह आज भी शाम 6:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रसारित भोजपुरी बुलेटिन समाचार।

शाम 6:10 पर सुनिए ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर। भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत की प्रस्तुति होगी शाम 6:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद आप सुनेंगे आज शाम 7:00। शाम 7:15 पर सुनिए सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और ज़िले की हलचल हम रिले करेंगे शाम 7:25 से। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम ई मनपसंद की प्रस्तुति होगी शाम 7:50 पर। रात्रि 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या हम रिले करेंगे। रात्रि 9:00 सुनिए भोजपुरी लोकगीत लोकधारा।

रात्रि 9:15 पर हम आपको सुनवाएंगे नात, कार्यक्रम होगा बंदगी। रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10 बजे। रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। और

गैर फिल्मी हिंदी गानों का कार्यक्रम रसरंग की प्रस्तुति होगी रात्रि 10 बजे। रात्रि 10 बजकर 30 मिनट पर सुनिए हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट तराने। और आखिर में रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार और रात्रि 11 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी समाचार बारी बारी से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय मिला ये शाम के 5:10 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

शंकरा एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे लखबीर सिंह लखा की आवाज़ में। और अब आइए सुनते हैं लोकेश गर्ग की आवाज़ में शिव शिव शंभू एल्बम का एक टाइटल भजन।

तू ही आस है मेरी एल्बम का ये टाइटल भजन अभी आप सुन रहे थे सोनी चौधरी झा की आवाज़ में। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भजन।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: इसी के साथ वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

बहुत सारी खुशियों से भरा हर श्रोताओं का जीवन, जिसमें ढेर सारी खुशियाँ और मोहब्बत हों। नमस्कार सखियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम घर आंगन में। सखियों, आज के इस कार्यक्रम में हम अपनी बहनों से बातें करेंगे। अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें, अपने हाथों और पैरों की देखभाल करें और भारतीय न्याय संहिता और महिलाएं पर चर्चा करेंगे। साथ ही गीत और संगीत का आनंद भी लेंगे। सखियों, महिलाएं अक्सर अपने परिवार के पालन पोषण, बच्चों की देखरेख और घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि वे अपने शारीरिक और मानसिक सेहत को नज़रअंदाज करने लगती हैं, कि खुद के स्वास्थ्य को सबसे पीछे रखती हैं। सखियों, हर महिला को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। परिवार की खुशहाली के चक्कर में खुद की सेहत को दांव पर लगाना सही नहीं होता है। जब आपकी अपनी सेहत अच्छी रहेगी, तभी आप दूसरों का ख्याल बेहतर ढंग से रख पाएंगी। महिलाओं को शुरू से ही त्याग की मूर्ति और दूसरों की ज़रूरत को सबसे पहले रखने की सीख दी जाती है। अक्सर महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह परफेक्ट होने की होड़ में खुद को इतना थका लेती हैं कि शरीर में एनर्जी ही नहीं बचती। सखियों, रोज़ाना के दिनचर्या में सुबह के नाश्ता कभी न छोड़ें। अपने खाने में प्रोटीन, हरी सब्जियां लें,

उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं में हड्डियों की कमज़ोरी और खून की कमी होना आम बात है, इसलिए अपने आहार में दूध, दही, पनीर ज़रूर शामिल करें। सखियों, 30 की उम्र के बाद समय समय पर ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड जैसी ज़रूरी मेडिकल टेस्ट भी ज़रूर करवाती रहें। घर के काम के तनाव के बीच खुद के लिए भी थोड़ा समय ज़रूर निकालें, जैसे अपने मनपसंद हॉबी, गीत सुनना, किताबें पढ़ना, योग, ध्यान, ये ज़रूर करें। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। रोज़ाना सुबह योग व्यायाम ज़रूर करें, इससे पूरे दिन एनर्जी रहती है। समय पर खाएं, समय पर सोएं, क्योंकि अच्छी नींद भी अच्छे स्वास्थ्य का स्वास्थ्य रहेगा। दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, यह त्वचा की चमक बनाए रखने में, पाचन को दुरुस्त रखने में मदद करता है। सखियों, यदि आप स्वस्थ और खुश रहेंगी तभी अपने परिवार को भी बेहतर देखभाल कर पाएंगी, इसलिए सेल्फ केयर को अपनी प्राथमिकता बनाएं। इसी के साथ आयो सखियों, सुनते हैं विनोद राठौर की आवाज़ में ये गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अभी हमने विनोद राठौर की आवाज़ में जो गीत सुना, ये गीत फिल्म बाजीगर से लिया गया था। संगीत दिए थे अनु मलिक ने। सखियों, और अब आइए बात करते हैं हाथ और पैर की देखभाल कैसे करें। हाथ और पैर की हमारे शरीर के व्यस्त अंग हैं, लेकिन अक्सर हम इनकी देखभाल को नज़रअंदाज कर देते हैं। इनकी सही देखभाल ना करने से

फटी एड़ियाँ, फंगल इन्फेक्शन और नसों की कमज़ोरी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सखियों, रोज़ाना पैरों को साबुन से धोएं और उंगलियों के बीच की जगह को अच्छी तरह से सुखाएं ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो। फटी एड़ियों से बचने के लिए रोज़ रात को फुट क्रीम या वैसलीन ज़रूर लगाएं। हमेशा आरामदायक और सही साइज़ के जूते पहनें। तंग जूते कॉर्न के जगह पे छाले पैदा करते हैं। पैर के नाखूनों को हमेशा सीधा काटें, कोनों से ज़्यादा ना काटें, अंतवर्धित नाखून की समस्या हो जाती है। सखियों, बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज़र के इस्तेमाल से भी त्वचा रूखी हो जाती है। हाथों पर भी टैनिंग और समय से पहले झुर्रियाँ आती हैं। बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। साथ ही बर्तन धोते समय या केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करते समय रबड़ का दस्ताने ज़रूर पहनें, इससे हाथ भी रूखे नहीं होंगे। अक्सर हम अपने चेहरे की देखभाल तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन हाथों और पैरों की देखभाल नहीं कर पाते। इन्हें भी ज़रूरत है अच्छी देखभाल की। सखियों, रोज़ाना नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। हाथों और पैरों में भी सर्दियों के मौसम में त्वचा और ज़्यादा रूखी और बेजान हो जाती है। त्वचा खींची खींची यानी कि पपड़ी जैसा नज़र आने लगता है, इसलिए हाथों और पैरों को भी हाइड्रेट होने की ज़रूरत है। वहीं यदि हमारी सखियां पार्लर जाती हैं तो और बेहतर है। अपने लिए थोड़ा सा समय निकालकर हाथों और पैरों की मेनिक्योर या पेडिक्योर ज़रूर कराएं और वैक्स भी करा लें। इससे हाथों और पैरों को एक नया रंगत मिल जाती है। और हाँ सखियों, रात को भी सोते समय सनस्क्रीन या मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, इससे त्वचा मुलायम और हाइड्रेट रहती है। यदि लगातार हाथ और पैर में झुनझुनाहट हो, नसों का नीला होना या उभरा हुआ दिखे या फिर नाखूनों का रंग बदले तो डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। और अब आइए सखियों, सुनते हैं एक और गीत। आवाज़ें हैं महालक्ष्मी अय्यर की।

अभी हमने महालक्ष्मी अय्यर की आवाज़ों को सुना और अब आइए बातें करते हैं भारतीय न्याय संहिता और महिलाएं पर। सखियों, भारतीय न्याय संहिता जो भारतीय दंड संहिता की जगह लागू हुई, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए कई सख्त और नए प्रावधान करती हैं।

इसके तहत महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए अलग से अध्याय बनाया गया है, जिसमें कठोर सज़ा और त्वरित न्याय पर विशेष जोर दिया गया है। सखियों, BNS की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत बलात्कार के मामलों में कड़ी सज़ा का प्रावधान है। नाबालिग से जुड़े मामलों से मौत की सज़ा तक का प्रावधान शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति महिला की लज्जा भंग करता है या उसके साथ गलत करता है तो धारा 76 के तहत सख्त कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़न की धारा 498A और दहेज हत्या 304B जैसे मामलों को BNS में अधिक जवाबदेही के साथ शामिल किया गया है। महिलाओं के प्रति क्रूरता को रोकने और उन्हें घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 भी प्रभावी है। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 लागू है, जो महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करता है। सखियों, संकट में फंसी महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श दिए जाने की योजना चलाई जा रही है। महिलाओं की तुरंत सहायता के लिए सरकार द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 संचालित की जाती है। सखियों, यदि आपके आसपास भी ऐसी कोई घटना हो रही है तो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करें। और सखियों, अब चलते चलते आइए सुनते हैं कुमार शानू को

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की, बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी। लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना। जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो,

कुमार सानू की सुरीली आवाज़ों में हमने अभी जो गीत सुना था, ये गीत फिल्म प्यार तो होना ही था से लिया गया था। सखियों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने की। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपनी सखी सुनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम घर आंगन। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है भोजपुरी लोकगीत।

प्रणाम। ये आकाशवाणी पटना है। अब रउआ आशुतोष से सुनी भोजपुरी समाचार। राज्य सरकार अब आम लोगन के शिकायत के जल्दी निपटावे खातिर हरेक महीना के दूसरका मंगर के दिने पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर लगाई। इस शिविर के शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में स्थित संवाद भवन से हुई। ये खास शिविर ओह लोग खातिर रही जे जिला स्तर पर सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज करावे के बादो समाधान से संतुष्ट नहीं खन। शिविर में चुनल गईल आवेदकन के शिकायत के समीक्षा मुख्यमंत्री स्तर पर हुई। आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कल जा सकेला। आवेदक अपना पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर आ मोबाइल नंबर पर मिलल ओटीपी के मदद से आवेदन प्रक्रिया पूरा कर सकेलें। चुनल गईल आवेदकन के शिविर के तारीख समय आ दोसर जरूरी जानकारी SMS के माध्यम से भेजल जाई। और जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 पर मिल सकेला। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आज 125वीं जयंती मनावल जा रहल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकरा के श्रद्धांजलि देवे के बेरा कहलन कि डॉक्टर मुखर्जी साहस, राष्ट्रवादी आ निस्वार्थ सेवा के अमर प्रतीक रहलें। गृहमंत्री अमित शाह कहलन कि ऊ राष्ट्र के एकता, अखंडता आ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मजबूत समर्थक रहलें। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, संगठन के महामंत्री भीखू भाई दलसानिया, सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई गो वरिष्ठ नेता उनकरा के श्रद्धांजलि अर्पित कैलें। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA नीट UG परीक्षा के फीस वापसी करे खातिर बैंक खाता के विवरण अपडेट करे के समय सीमा ए महीना के 7 जुलाई तक बढ़ा देले बा। एजेंसी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बतौले बिया कि जे उम्मीदवार अपना बैंक खाता के जानकारी के पुष्टि कर देले बड़े ओह लोग के रिफंड प्रक्रिया शुरू कर दहल गई बा। राज्य सरकार 16वां वित्त आयोग के सिफारिश पर राज्य के ग्राम पंचायतन में हर घर से साले साल 1200 रुपया टैक्स वसूली के लेके विरोध दर्ज कैले बिया। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश कहलन कि पंचायती राज मंत्रियन खातिर आयोजित कार्यशाला में ए फैसला के बिहार नियन राज्यन खातिर ढील देवे की मांग कैल गई बा। पटना जिला के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होखे वाला उपचुनाव खातिर अधिसूचना जारी होके के साथे आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई बा। उम्मीदवार 13 जुलाई तक नामांकन दाखिल कर सकेले। 14 जुलाई के नामांकन पत्रन के जांच हुई। नाम वापसी के आखिरी तारीख 16 जुलाई बा। मतदान 30 जुलाई के हुई जबकि मतगणना 3 अगस्त के करावल जाई। मालूम होके कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफा देला के बाद इस सीट खाली भइल रहे। जन सुराज ए पार्टी इस सीट से प्रशांत किशोर के उम्मीदवार घोषित

कैले बिया। राष्ट्रीय जनता दल रेखा गुप्ता के उम्मीदवार बनौले बिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल आज पटना में पत्रकार सम्मेलन में ई जानकारी देलन। बताओ जरूरी बा कि साल 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद रेखा गुप्ता के ही उम्मीदवार बनौले रहे। एनडीए के तरफ से भी इस सीट पर जल्दी उम्मीदवार के नाव घोषित करे के संभावना बा। प्रदेश में पटना सहित उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाका में बरखा हो रहा बा। मानसून के सक्रिय होखला से प्रदेश के बाकी हिस्सन में भी बरखा के स्थिति बनल बा। मौसम विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक अगला 4 दिन तक राज्य में बरखा होखे के अनुमान बा। विभाग कालकटियार और किशनगंज जिला में बहुत बेसी भारी बरखा बरसे, जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिला में भारी बरखा के चेतावनी जारी कैले बा। वही जा पिछला 24 घंटा के दौरान भागलपुर में सबसे बेसी 47.8 मिलीमीटर बरखा रिकॉर्ड दर्ज कैल गई बाटे। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बिहड़ा मोड़ लगे ट्रक के चपेट में आवे से ऑटो रिक्शा पर सवार 2 गो महिला के मौत हो गई, जबकि 10

0: चंपारण जिला में भारी वर्षा के चेतावनी जारी कैले बा। ओहिजा पिछला 24 घंटा के दौरान भागलपुर में सबसे बेसी 47.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड दर्ज कैल गई बाटे। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बिहड़ा मोड़ लगे ट्रक के चपेट में आवे से ऑटो रिक्शा पर सवार 2 महिला के मौत हो गई, जबकि 10 जने घायल हो गए बने। उन्हें भोजपुर जिला के बिहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जौना से चालक के जान चल गई। यह बीच दरभंगा जिला के बहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन के चपेट में आवे से मोटरसाइकिल सवार एगो युवक के मौत हो गई बा, जबकि 2 जने गंभीर रूप से घायल बड़े। वह अररिया जिला के बैरगाछी थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 327E पर पुलिस वाहन जांच अभियान के दौरान एगो कार से भारी मात्रा में शराब बरामद कैले बिया। ये मामला में 2 शराब तस्कर के भी गिरफ्तार कैल गई बा। एक साथ आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एहिजा समाप्त भइल।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण कार्यक्रम गांव घर।

कार्यक्रम गांव घर के साथ हम ही रनिया बहिन सबसे पहले करें जा स्वीकार हमार नमस्कार। देखिए श्रोता सभी हमने के सब जाने लग जा कि पेड़ पौधा आ जंगल हमने के जीवन का सबसे बड़ा सहारा हुआ। अगर धरती पर जंगल नहीं रही तो इंसान का जीवन भी मुश्किल हो जाए। यही से कहल जाला कि वन का रक्षा हमने खातिर के ओमें अगर जितना रक्षा करें भलाई छिपल बाटे। जंगल हमने के खाली लकड़िए नहीं देला श्रोता सभे बल्कि साफ हवा शुद्ध पानी फल फूल औषधि कहे का मतलब अनगिनत जितना भी जीव जंतु बना सबकर घर कभी व्यवस्था जंगल से ही होखेला। एक अलावा सबसे बड़ा बात तो बा कि हमने के गांव के लोगन खातिर जंगल का महत्व इतना बाटे कि उनकर माने जीवन बहुत हद तक प्रकृति के एकदम नज़दीक बाटे। काहे कि देखी घास पास फूस का जौन मड़ई होखेला छाव होखेला चाहे मर मवेशी बना तो ऊ सब जौन होखेला कि भूसा उसा पतई उतई जौन भी बाटे सब वही पर टिकल बाटे। आज के समय में तो देखते बानी कि हमने की तेजी से पेड़ों का कटाई हो रहा बाटे। नया नया सड़क बड़ बड़ भवन आ कारखाना बनावे खातिर के जंगल के ख़त्म कइल जा रहा बाटे। एकर असर हमने के साफ अभी भी लौक रहा बाटे दिखाई दे रहा बा श्रोता सभी। देखिए कि गर्मी हली एक साल बढ़त जा रहा बाटे। समय पर बरखा नहीं होखत जगह जगह कहीं सूखा देखे कि पड़ गई तो कहीं एकदम बाढ़े आ गई बाटे। खेत का उपज भी पहले जैसन अब नहीं होखत। ये सब हमने के देख करके ये समझ में आवता कि अगर हमने के समय पर अपने जंगल का रक्षा नहीं कर जाए तो आवे वाला दिन में कितना और कठिन हो सकत बाटे जीवन जियल हमने के। श्रोता सभी जंगल धरती का श्रृंगार है जिसे कोई के घर के साफ सुथरा सुंदर रखे में ओकरा में रहे वाला के सुख मिलेला। वैसे ही धरती पर जंगल अगर रही तो समझ लें कि पूरा वातावरण में खुशहाली बना रही। पेड़ हवा जौन बाटे ओकरा के साफ करेला आ धूल प्रदूषण के कम करेला आ मौसम के एकदम संतुलित बनौले रखेला।

इहे कारण बा श्रोता सभे कि हर आदमी के हर व्यक्ति के कर्तव्य बनता कि वो जंगल के रक्षा कर आ अधिक से अधिक पेड़ लगावा। जंगल खाली हमनी के पेड़ का समूह नहीं होला, बल्कि ये अनगिनत जीव जंतु पशु पक्षी छोट छोट कीड़ा का भी घर होखेला। अगर जंगल खत्म हो गए तो सब जीव भी धीरे धीरे खत्म होखे लगे हैं। जब जीव जंतु नहीं रही हैं तब प्रकृति का संतुलन भी बिगड़ जाए। एकर असर आखिर में इंसान पर भी पड़बे करेला। इसे जंगल के बचावल बहुत ही जरूरी बाटे आ पेड़ पौधा के भी बचा के रखी, जंगल के भी बचा के रखी, नया नया पेड़ पौधा लगाई, बल्कि पूरा जीवन के एकदम सुरक्षित कर ले। गांव में रहे वाला लोगन अच्छी तरह जानेला, बढ़िया से जानेला जा हमनी के कि पेड़ का कीमत कितना होखेला। गर्मी के दिन में यह पेड़ हमनी के ठंडा छांव देवेला। खेत के किनारे अगर लगा रहेला पेड़ श्रोता सभे तो देखें वही हमनी के दिन भर काम करेला जा, चाहे तनकी सा छहिरा में अगर सुस्ताए के होखे, चाहे राहगीर आदमी चलत रहेला रास्ता में तो तनकी सुस्ताए के होखे, हवा लेबे के होखे, ठंडा ठंडा छाया अगर खोजी जा तो अगर पेड़ नहीं रही तो कहाँ से मिली। गांव के कई गो परिवार आज भी लकड़ी पत्ता फल फूल जड़ी बूटी जंगल पर ही निर्भर बना। पशुअन खातिर के चारा भी जंगल से ही मिलेला। अगर जंगल नहीं रही तो गांव का जीवन भी जैसे सोच नहीं कि कैसन होखे। श्रोता सभी आज जरूरत है बात के बाद कि हमनी के खाली सरकार के भरोसे न रह करके हर गांव, हर परिवार, हर आदमी की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी समझे के होखी कि पेड़ का कटाई रोके के पड़ी और जहाँ जगह मिले वो जहाँ नया पौधा, नया बढ़िया बढ़िया वैरायटी, चाहे औषधि पौधा हो खेल, चाहे आम का हो गेल, पीपल का हो गेल, बरगद का हो गेल, चाहे कौनो फल फलहरी के पौधा लगा लगाई आ सबसे ओकरा से ज़्यादा जरूरी हो खेला ओकर देखभाल कैल। कहे कि पौधा लगा देले से काम पूरा नहीं हो जाला श्रोता सभे, जब तक वो बड़ होकर के पेड़ नहीं बनी तब तक ओकर रक्षा हमनी के कैल फर्ज बाटे। श्रोता सभे आई हमनी के अभी बातचीत कैल जाई आ इहे हमनी के सप्ताह चल रहल बाटे। 1 से 7 सप्ताह तारीख तक वन महोत्सव सप्ताह चलावल जा रहल बाटे। तो यह सप्ताह के हमनी के सरकार से मिलजुल करके हमनी के सप्ताह के सफल बनावे के, महोत्सव के सफल बनावे के, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेवे के, जितना हो सके कौनो पर्व त्यौहार होके वह पर हुआ पेड़ लगा दिए। बरसात का मौसम बड़ा बढ़िया, बरसात का मौसम बाटे, यही समय हुए पेड़ पौधा लगावे के। चाहे कोई का जन्मदिन भइल, शादी ब्याह भइल, कौनो खुशी का काम भइल, अभी 1 से 1 लड़का पढ़ करके पास होकर के निकलना है तो खुशी में रुआ पेड़ पौधा लगवाई उनका से, उनका के कहीं कि जैसे जैसे तू बचवा आगे बढ़वा, जैसे से तुम्हार शिक्षा आगे बढ़ी, जैसे से तू तरक्की करवा, वैसे वैसे ये पेड़ बढ़त चल जाए और जैसे जैसे पेड़ बढ़ी वैसे वैसे तुम्हारा के छाया भी जरूर एक दिन दही, एक दिन वह तुम्हार प्राणवायु बन जाए। तो श्रोता सभे हमनी के मिलजुल करके सरकार के हाथ से हाथ मिला करके कदम के आगे बढ़ावे के बाटे, पेड़ पौधा लगावे के बाटे। अब हमनी के चले कि अब एक थे हमनी के लोकगीत सुन लेहल जाओ। आज के लोकगीत के कलाकार बनी प्रेम रंजन सिंह, तो सुने के एक थे बरसाती गीत।

0: यह लोकगीत खातिर बरसाती गीत खातिर के प्रेम रंजन सिंह के बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बढ़िया लोकगीत लगल है। अब आगे बढ़े खातिर के हमने के पहले सुन लेवे की एक ठे वार्ता जेकर विषय बा वृक्ष का हमने के जीवन में महत्व। वार्ताकार बानी भूपेंद्र नारायण सिंह।
1: पृथ्वी की उत्पत्ति काल के बाद सर्वप्रथम यहाँ पेड़ पौधे ही जीव के रूप में विकसित हुए। वृक्षों के जन्म के हजारों वर्ष बाद अन्य जीव जंतु धरती पर आए, ऐसा शोधकर्ताओं द्वारा बताया गया है। वृक्षों के बिना धरा पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यदि यह कहा जाए कि वृक्ष हैं तभी जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वृक्षों से उत्सर्जित प्राणवायु ऑक्सीजन के सहारे ही धरती पर जीवन कायम है। मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक कदम पर वृक्षों का अति महत्वपूर्ण योगदान है। वृक्ष हमारे सबसे लाभदायक मित्र हैं। वृक्षों के महत्व को समझकर ही अपने देश में आदिकाल से ही इनकी पूजा की जाती है। वृक्षों में ईश्वर का वास है, ऐसी भावनाएं यहाँ के लोगों के बीच व्याप्त हैं। वृक्षों से हमें शुद्ध वायु तो प्राप्त होता ही है, अनेकों प्रकार के फल फूल वस्त्र इत्यादि भी प्राप्त होते हैं। वृक्षों के प्रभाव से वर्षा का पृथ्वी पर आगमन होता है। जहाँ वृक्षों की संख्या पर्याप्त होती है वहाँ भूजल स्तर भी सामान्य होता है। मिट्टी के कटाव को रोकने में वृक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वृक्षों की हरियाली में ही मानव की खुशहाली छिपी होती है। जिस भूभाग पर वृक्षों की संख्या अधिक होती है उस क्षेत्र के लोग स्वस्थ एवं खुशहाल होते हैं। पेड़ पौधे स्वास्थ्यप्रद वातावरण प्रस्तुत करते हैं। मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन वस्त्र एवं आवास हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने आसपास जहाँ भी अनुकूल स्थान हो वहाँ वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, अर्थात वृक्ष अपने परिवार के सदस्यों से भी हमारे लिए अधिक फलदायी होते हैं। वनाच्छादित क्षेत्रों में वर्षानुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है, साथ ही उस क्षेत्र में भू जलस्तर भी ऊपर होता है। वृक्ष केवल जंगलों की ही नहीं बल्कि प्रत्येक वैसे क्षेत्रों की भी ज़रूरत है जहां मानव निवास करते हैं। सड़कों के दोनों तरफ वृक्षारोपण का कार्य सैकड़ों वर्षों पूर्व से होते आ रहा है। इस कार्य से मनुष्यों को कितना आराम होता है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। धूप एवं बरसात से बचकर राहगीर ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी आनंदित हो जाते हैं। विकास की अंधी दौड़ में आज

मनुष्य अपने सबसे महत्वपूर्ण साथी पेड़ पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज के 5 दशक पूर्व जहां केवल ईंधन एवं आवासीय ज़रूरतों के लिए वृक्षों की कटाई होती थी, वहीं हाल के दशकों में विकास के नाम पर वृक्षों का दोहन अनवरत जारी है। पेड़ों की कटाई से संपूर्ण विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी खतरनाक समस्या से जूझ रहा है। वृक्षों की कमी का असर मानसून को ही प्रभावित कर रहा है, जिसके फलस्वरूप अतिवृष्टि व अनावृष्टि के क्षेत्र में इलाके बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा वृक्ष लगाने एवं वृक्ष बचाने के नाम पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, फिर भी ज़मीनी सच्चाई इससे अलग है। प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद वृक्षों की संख्या कागज़ों में ही सिमट कर रह जाती है और ज़मीन वीरान ही रह जाती है। दूसरी तरफ वृक्षों की कटाई बेरोक टोक जारी है। जिस रफ्तार से वृक्षों की कटाई हो रही है, वृक्षारोपण की रफ्तार काफ़ी धीमी है। ऐसा होने से पर्यावरण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। बाढ़ और सुखाड़ इसी असंतुलन की वानगी है। भू जलस्तर का लगातार खिसकना और जानलेवा गर्मी एवं आंधी तूफानों की श्रृंखला भी पर्यावरण असंतुलन के ही दुष्परिणाम हैं, जिससे मानव जीवन कराह रहा। लेकिन इस गंभीर वर्तमान एवं भयावह भविष्य के प्रति हम लोग लापरवाह हैं। प्रकृति के अनमोल उपहार के रूप में मानव को वृक्षों जैसा पालक प्राप्त हुआ है। वृक्षों से मानव की सर्वाधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। आदिकाल से ही वनौषधियों के प्रयोग से मानव जीवन लाभान्वित होता रहा है, लेकिन जीवन प्रदायी वृक्षों को बचाने एवं उनकी संख्या बढ़ाने की ओर आम जनजीवन का ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। वृक्षारोपण कार्यक्रम अब एक समारोह आयोजित करने का शगल बनकर रह गया है। कभी कभार कहीं विद्यालय के छात्रों द्वारा तो कहीं किसी राजनेता या अधिकारी द्वारा 2-4 पौधे लगाकर वृक्ष लगाओ अभियान की इतिश्री कर दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ जंगलों से लेकर गांवों तक में वर्षों पूर्व से लहराते वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वृक्षों की कटाई और नए वृक्षों को लगाने के बीच दिनानुदिन खाई बढ़ती चली जा रही है। इस असंतुलन से उत्पन्न स्थिति को लेकर हमारी लापरवाही इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। चूँकि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वृक्षों से प्राप्त सामग्रियों की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, इसलिए हम यह मान बैठते हैं कि बगैर वृक्षों की कटाई के कार्य संपन्न नहीं हो सकता। चाहे गृह निर्माण के काम हो, उद्योग धंधों की स्थापना हो अथवा किसी भी प्रकार के विकास कार्य हो, लकड़ी की ज़रूरत होती है। आज चाहे एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, फाइबर आदि से जितनी भी सामग्रियों के निर्माण हो रहे हैं, लेकिन लकड़ी के फर्नीचरों की कोई सानी नहीं है। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने हेतु हम लोग लकड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, इसके लिए वृक्षों की कटाई होती है। इस कार्य में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि जो वृक्ष काफ़ी पुराने और काटने योग्य हों, उन्हें ही काटी जाए और इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाए। हरे वृक्षों एवं बगैर अनुमति के वृक्षों की कटाई कानूनन जुर्म है और इसके लिए अर्थदंड से लेकर जेल तक की सज़ा निर्धारित है। साथ ही हमें एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि जितनी संख्या में वृक्षों की कटाई हो, उससे कहीं अधिक नए वृक्षों को लगाने का भी कार्य हो, तभी हम पर्यावरण संतुलन को कायम रख सकते हैं। बरसात के इस मौसम को वृक्षों

0: के पौध लगाने का सबसे उपयुक्त समय माना गया है। इस समय लगाए गए पौधों को प्रकृति से पानी प्राप्त हो जाता है, जिससे उनकी जड़ें मिट्टी को आसानी से पकड़ लेती हैं और 70% पौधे जीवित बच जाते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। आसपास जितने अधिक वृक्ष होंगे, हम उतने ही स्वस्थ होंगे। इसलिए हरे वृक्षों की कटाई कभी नहीं करनी चाहिए।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आज के वार्ता खातिर की भूपेंद्र नारायण सिंह के। देखिए श्रोता सभी, आज 6 जुलाई हुए, आज के दिन यानी कि 6 जुलाई के दिन विश्व जूनोसिस दिवस मनावल जाला। आज के दिन का उद्देश्य ये हुए कि लोगन के ऐसन बीमारी के बारे में जागरूक कइल जाओ जौन कि जानवर से इंसान में फैलेला। ई खाली एगो दिवस नहीं बल्कि स्वास्थ्य आ जागरूकता का संदेश देवे वाला महत्वपूर्ण अवसर हवे। ई हमनी के सिखावेला कि अपने पशुओं की अच्छा देखभाल करें, समय पर उनका टीकाकरण कराएं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें आ बीमार पशु के तुरंत इलाज करवाएं। हमनी के परिवार आ समाज के सुरक्षा खातिर की बहुत जरूरी होखेला। छोट छोट सावधानी श्रोता सभे अपना करके हमनी के कई तरह की बीमारी से बच सकतनी जा। ऐसे यह विश्व जूनोसिस दिवस पर हमने सबके संकल्प लेबे के चाहिए कि अपने आसपास स्वच्छता अपना के रखी जा, पशुओं के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखी जा आ दूसरे के भी एक बारे में जागरूक करी जा। स्वस्थ पशु, स्वस्थ इंसान आ स्वच्छ वातावरण आ स्वच्छ पर्यावरण, यही एगो स्वस्थ आ खुशहाल समाज का पहचान होला। देखिए श्रोता सभी, एक अलावा मौसम अभी बरसात का मौसम चल रहा बाटे। मौसम हर तरह का बरसात में बड़ी बढ़िया लगेला, सबकी अच्छा लगेला। चारों तरफ हरियाली छवले रहेला, खेत खलिहान लहलहात रहेला, किसान के चेहरा खुशी से झूमत दिखाई देवेला। लेकिन श्रोता सभी, ये मौसम अपने साथे साथे कई गो बीमारी भी लेकर के आवेला। अगर हमनी के तन की लापरवाही करके अगर सचेत नहीं भेल जाता, समझ लें कि पूरा परिवार बीमार पड़ सकते बटे। ऐसे बरसात के दिन में सावधानी रखल बहुत जरूरी बाटे। जैसे कि बरसात में जगह जगह पर पानी जम जला, गंदगी बढ़ जला आ मच्छर मक्खी जैसन कीड़ा मकोड़ा तेजी से पैदा होखे लगल। इहे मच्छर मक्खी जोन बाटे कि कई तरह की बीमारी फैलावेला। एकरे अलावा गंदा पानी पियल, चाहे बासी चाहे खुलल फुलल जैसे तैसे आदमी खाना घर में रखले रहेला तो ओकरा के भी खैला से लोग बीमार पड़ जाना। ऐसे यह समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे के चाहिए। गांव में बरसात के समय नाली जोन बा, जितना भी नाली बा, गढ़ा बा, घर के आसपास जोन पानी लग जाला, जम जाला, अगर यह पानी के समय पर ना ही हटावल जाए तो मच्छर उजा बढ़िए जाइए। आ इहे मच्छर डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया जैसन बीमारी फैलावे का कारण बन जाना। ऐसे अपने घर अंगना आसपास कहीं भी पानी अगर जमा बाटे तो ओकरा के एकदम हटा दही। आ सबसे जरूरी या खास बात ही कि घर में रुआ कूलर अगर रख ले होखब तो वह कूलर के पानी के भी हमने के साफ सुथरा करके हटा देवे के चाहिए। अगर अभी कूलर के में पानी डाल करके अगर हवा लेते बनी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। श्रोता सभी, यह पर हमने के ध्यान देवे के चाहिए। चाहे ऊपर ड्रम रहेला, बाल्टी रहेला, वह सब में भी खाली ऐसे ही बिगाइल फेंकाइल रहेला छत पर चाहे अंगना में, वह सब में भी पानी जम जाला तो वह पानी के रुआ फेंक दही, साफ सफाई कर दही, ओकरा के उलट करके रख दही। इस सब पर हमने के विशेष ध्यान रखे के चाहिए। अभी आम का मौसम बड़ा चल रहा बाटे, सबके घरे मने एक एक दो दो किलो, अढ़ाई अढ़ाई किलो, पाँच पाँच किलो आम जा रहा बाटे। अंधाधुन आम का लोग खा रहा बना, जैसे भी खा सवेरे सांझ दोपहर या, तो ओकरा के साफ सफाई बढ़िया से हमने के रखे के बाद

नहीं तो वही आम के जरिए रउरे घर में मक्खी एकदम प्रवेश करी है आ उहे खाना के जौन बा जहाँ तहे मक्खी बैठे ली गंदा संदा पर मक्खी बैठ करके उहे खाना पर बैठ जी हैं उहे आम के गुठली पर बैठ जी हैं आम पर रुआ जौन खाता नहीं वह पर बैठ जी हैं समझ लें कि बीमारी का घर होइबे करी। श्रोता सभी एकरे अलावा हमनी के देखी बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा पेट से भी जुड़ल हमनी के बीमारी देखे के मिलेला जहाँ गंदा पानी चाहे खुलल पानी रखल रहेला ओकरा कदमी उठावे ला पी लेवे ला तो एकरा से का होला दस्त होखेला उल्टी होला पेट दर्द होला बुखार जैसन परेशानी हो सकत बाटे। ऐसे हमेशा पानी के उबाल करके पीही साफ़ करके पीही आ खाए वाला चीज़ के तो कहबे के नहीं कि ढाक तोप करके अपना के रखी आ बरसात में मच्छर का प्रकोप जोन बा बहुत तेजी से बढ़ेला श्रोता सभी इसे रात में सुते समय मच्छरदानी का उपयोग जरूर करे के चाहिए आ यू से करे के चाहिए कि जहें तहे हमने के कीड़ा मकोड़ा भाई चलत रहे ना तो मच्छरदानी के अपने बिछावन के नीचे बड़ी बढ़िया से दबा करके रखें। अब हमने के मौसम आधारित कुछ कृषि परामर्श भी जान ले जाओ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि में 8 जुलाई के दौरान जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले या हल्का से मध्यम बरखा होके के अनुमान बाटे। जिला के एक दो स्थान पर भारी बरखा होके के भी संभावना बाटे। अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बाटे। सापेक्ष आर्द्रता सवेरे 80 से 85% आ दोपहरिया में 25 से 30% रहे के संभावना बाटे। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से दक्षिण आ पूर्वी हवा चले के भी संभावना बाटे। आगामी दिन के वर्षा के संभावना के देख करके खड़ा फसल में सिंचाई स्थगित कर दही आ खाद कीटनाशक का छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी आ वर्तमान में मानसून का जो कमजोर स्थिति के देख करके किसान के सलाह देहल जा रहा बाटे कि ऊंचा भूमि में धान के खेती न करी आ जवन किसान के पास सिंचाई का सुविधा उपलब्ध बाटे वो मध्यम अवधि वाला धान का किस्म का बिचड़ा गिराई आ बीज स्थली में नमी बनाए रखे खातिर के आवश्यकता अनुसार जीवन रक्षक सिंचाई करी। धान के किस्म सबौर मोती धान सबौर सोना आदि का सीधा बुआई भी कर सकता नहीं। अगर जिला में भारी बरखा होत बा तो धान के नर्सरी में जल भराव से बचे खातिर के ओकर उचित जल निकास का व्यवस्था हुआ करे के पड़ी। और थोड़ा सा हमने के भिंडी पर भी देख लिया कि भिंडी कद्दू खीरा नेनुआ लौका फसल का निगरानी गुड़ाई ओकर निराई गुड़ाई करत रहीं खरपतवार ओकर नियंत्रण करत रहीं पतई खाए वाला सुंडी आ फल छेदक कीट का भी नियमित निगरानी करत रहीं। प्रकोप होखला पर डाइथेम 8 30 EC का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करी जब आसमान साफ रहे तब्बे करी। आ गला घोटू आ लंगड़ी रोग हमने के गाय खातिर के बाटे कि गला घोटू आ लंगड़ी रोग से बचाव खातिर के टीकाकरण करावे का आवश्यकता बाटे। सब दुधारू पशुओं में टीकाकरण अवश्य कराई। नया गेहूं के भूसा के खियावे से पहले करीब 2 घंटा पानी में फुला दही आ 50 ग्राम खनिज मिश्रण आ 50 ग्राम नीमक आ चारा दाना मिला करके उनकरा के दे दही। आ अब देखिए हमने का समय एकदम अब गवाही नहीं खेदे तो बोले कि गाँव घर कार्यक्रम की प्रस्तुत करता रही संतोष कुमार। अब हमने के एकदम बेरा होकर चले के तो चलत चलत सभी श्रोता लोगन के रनिया बहन का नमस्कार।

हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम गांव घर। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:40 हुए हैं। प्रस्तुत है भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ गीत।

बलम परदेसिया फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में। अब आइए हम आपको सुनवा रहे हैं भैया दूज फिल्म से एक गाना, अलका याग्निक की आवाज़ है, लक्ष्मण शाहबादी हैं गीतकार और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भैया दूज फिल्म का ये गीत। अब आइए सुनते हैं दंगल फिल्म से एक गाना आशा भोसले की आवाज़ में। कुलवंत जैन हैं गीतकार और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।

0: जिन फिल्मों के गाने आज आप सुने सांझगीत कार्यक्रम में, वो फिल्में थीं बलम परदेसिया, भैया दूज और दंगल। और अब इसी के साथ भोजपुरी फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम सांझगीत यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बाद आ गया दिन सोमवार का और कार्यक्रम का नाम बुनियाद है। युवा साथियों, आपके लिए ये कार्यक्रम लेकर हम आते हैं जिससे आपको करियर में क्या चुनना है, कहाँ जाना है, क्या कुछ कर सकते हैं, अपने राज्य में यूनिवर्सिटीज की क्या स्थिति है, ढेर सारी जानकारियां हम विशेषज्ञ से दिलवाते हैं और लगातार सजग रहते हैं कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। एक बात हमेशा राजेश कहता है आपसे कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, टेक्निकल पढ़ाई पढ़ लीजिएगा ना तो प्लेन स्टडी सीधे सीधे पढ़ने से ज्यादा रोजगार की संभावनाएं हो जाएंगी। जी हाँ, आप स्वव्यवसाय भी कर सकते हैं, आप सरकारी और निजी क्षेत्र में जाकर रोजगार भी तलाश सकते हैं। बहरहाल बहुत सारी बातें करनी है। बीएड एक हॉट केक है, बीएड हाँ, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जी हाँ, बीएड एक हॉट केक है। इसमें एक नया तो नहीं कहें लेकिन बहुत ही उम्दा कोर्स आया है, बीएड स्पेशल एजुकेशन। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमने पहले भी चर्चा की है, रिस्पॉन्सेज भी आए हैं। आज फिर से हमने अपने स्टूडियो में डॉक्टर अवनीश रंजन को बुलाया है, बातें होंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें हम कि ये कार्यक्रम बुनियाद पूरे बिहार में और झारखंड के बहुत बड़े हिस्से में, हम चाहते हैं कि कोई भी युवा इस बात से अनजान नहीं रहे कि अब टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इसलिए उसे चुनना चाहिए टेक्निकल पढ़ाई को। हम एक फोन नंबर भी देते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि बिहार में एक यूनिवर्सिटी है, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में है, जो टेक्निकल पढ़ाई का एक हब है और मेडिकल यानी MBBS और PG जो है मेडिकल का, उसकी पढ़ाई के साथ साथ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई है जो यहाँ कराई जाती है सक्सेसफुली। पैन इंडिया टीचर्स हैं और पैन इंडिया अब स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सिर्फ इसलिए लेकर आते हैं कि अगर आप बाहर जाने की सोच रहे हैं तो अनर्थक अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करें। कम पैसे में अच्छी गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आपके राज्य में मिल रही है, स्टूडेंट्स की कमी नहीं है यहाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसका लाभ उठाएं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, हालांकि एडमिशन आपका एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही होगा, लेकिन आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमने एक नंबर लिया है जो आपके लिए है, जिस पर आप और अधिक जानकारियां ले सकते हैं। नंबर है 9431899002 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121051 1800121051। एक बात और बताते चलें, तब हम डॉक्टर अविनीश रंजन को बुलाएंगे और पूरा उनके विषय में जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। यहाँ प्लेसमेंट सेल भी है, जब आप क्वालिफाई कर जाते हैं, पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तब यहाँ के लोग जो प्लेसमेंट सेल है ना, आपके रोजगार के लिए भी सजग है, उसमें आपको 100% असिस्टेंस देता है। बहरहाल डॉक्टर अविनीश रंजन, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे सुनने वालों को और पूरा परिचय आप अपना दीजिए।
1: मेरा नाम डॉक्टर अविनीश रंजन है और मैं फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में डीन के पद पे हूँ। और हमारे फैकल्टी में मुख्यतः दो तरह के कोर्स चलते हैं, एक रिहैबिलिटेशन के जिसको पुनर्वास विज्ञान बोलते हैं, दूसरा स्पेशल एजुकेशन जो विशेष शिक्षा के रूप में हम लोग उनको जानते हैं।
0: डॉक्टर अविनीश, एक बात हम सबसे पहले अपने पूरे बिहार और झारखंड के युवाओं, उनके माता पिता के लिए पूछना चाहते हैं कि बीएड हॉट केक है, लेकिन बीएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन, ये कहाँ अलग है और कौन ज्यादा है? बीएड स्पेशल एजुकेशन कहाँ है, इसके बारे में बताइए।
1: जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि दो अलग अलग ये कोर्स क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक समय ऐसा था जब दो अलग अलग बीएड कोर्स चलते थे, और जिसमें था कि एक वैसे बीएड जो सामान्य विद्यालयों में सामान्य बच्चों को पढ़ाने के टीचर के रूप में ट्रेंड होते थे, और दूसरा बीएड जिसमें कि जो दिव्यांग बच्चे हैं,

0: जो कोई मानसिक रूप से कमजोर है या देखने में उनको दिक्कत हो रही है या सुनने बोलने में दिक्कत है, उन बच्चों के जो विशेष शिक्षक होते थे उनकी ट्रेनिंग होती थी। ये आज से करीब 4 साल 5 साल 8 साल पहले ये कॉन्सेप्ट था। अभी सरकार ने ये निर्णय लिया कि चूंकि हमारे सारे जब से सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान पूरे भारत में लागू हुआ, तो उसके बाद सरकार का ये निर्णय हुआ कि जो टीचर होंगे स्कूल के, जो भी टीचर होंगे, वो सारे इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम के ट्रेंड होने चाहिए। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वैसा विद्यालय जहाँ पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे जो स्कूल के फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में शामिल होने के लायक हैं। तो अब जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड हैं, जो जिन्होंने किया है कोर्स को, वो सामान्य विद्यालयों में भी सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड होते हैं और वो टीचर दोनों बच्चों को एक समान रूप से पढ़ा सकते हैं।
1: तो एक बात तो यहाँ हम कह सकते हैं, हाँ अविनीश जी, आपके सामने या आपसे जो बातचीत हो रही है, जो आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड के बारे में बताया, कि हमें लगता है कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो है वो एक कदम आगे है बीएड से, क्योंकि इसमें समग्र यानी वैसे बच्चे जो सही हैं, वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी उनमें कमी है, उनके लिए, हाँ उनके लिए भी बीएड स्पेशल एजुकेशन में तैयारी करवाई जाती है, प्रोफेशनल तैयार करवाए जाते हैं, क्या कहते हैं
0: जी? अगर एडवांस स्टेज की बात करें तो जब आप सिलेबस देखेंगे, करिकुलम इनका जो बना है, उसमें वो सारे पेपर्स हैं जो जनरल बीएड एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावे स्पेशल पेपर्स कुछ हैं जिसमें दिव्यांगता के बारे में, उनकी पहचान के बारे में, उनके मनोविज्ञान के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, उनके दैनिक क्रियाकलाप वो कैसा करते हैं, उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में, होम बेस्ड एजुकेशन जो गृह आधारित शिक्षा होती है उसके बारे में, पेरेंट्स को कैसे काउंसलिंग करेंगे उसके बारे में, ये सब्जेक्ट्स भी इंक्लूड करके और एक कम्पैक्ट प्रोग्राम तैयार किया गया जिसको हम लोग बीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं और ये कोर्स हमारे यूनिवर्सिटी में संचालित हो रहे हैं।
1: सोमवार का दिन है, कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, वर्षों हो गए ये कार्यक्रम आप तक हमें पहुंचाते पहुंचाते, और आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अविनीश रंजन, बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन की बातचीत चल रही है, एकदम हॉट केक है, जी हाँ बीएड स्पेशल एडुकेशन इस पर चर्चा चल रही है, बहुत सारे टेक्निकल पढ़ाई है जिसे आप पढ़ करके अपने करियर में स्टेबिलिटी ला सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और इसमें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आपके लिए एकदम खड़ा है। 13-14 टेक्निकल कोर्स है, अगर आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से मेडिकल की पढ़ाई भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है तो पैरामेडिकल के कोर्सेज हैं, बीएससी के कोर्सेज हैं टेक्निकल क्षेत्र में, इसके अलावा एएनएम जीएनएम हाँ फार्मेसी के कोर्सेज हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, जर्नलिज्म है, लॉ है, इंजीनियरिंग है, आईटी है, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सेल करके आगे ला सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो टोल फ्री नंबर है 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक नंबर है, मोबाइल नंबर है 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in, इस पर जाकर आप बातचीत कर सकते हैं। डॉक्टर अविनीश एक बात बताइए, बीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएड, क्या दोनों की पढ़ाई सेम है, दोनों का ड्यूरेशन कैसा है, ये सारी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को, और आपसे भी कह रहे हैं जो घर बैठकर बाजा पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, जिस चीज़ पर भी आप हमारे इस बुनियाद कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं।

0: अवनीश एक बात बताइए, बीएड स्पेशल एडुकेशन और बीएड, क्या दोनों की पढ़ाई सेम है, दोनों का ड्यूरेशन कैसा है, ये ये ये सारी जानकारी दीजिए हमारे सुनने वालों को। और आपसे भी कह रहे हैं जो घर बैठकर बाजा पर, रेडियो पर, मोबाइल पर, जिस चीज पर भी आप हमारे इस बुनियाद कार्यक्रम को सुन रहे हैं और करियर के बारे में सोच रहे हैं, ध्यान से सुनिए, समझिए और तब निर्णय लीजिएगा।
1: आज जब से NEP 2020 लागू हुआ है, उससे पहले 2 साल के बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद, उसी तरीके से 2 साल के स्पेशल एजुकेशन बीएड होते थे ग्रेजुएशन करने के बाद। लेकिन जब से नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 में, तो उसका ये कंपल्सन था कि हर एक बीएड कोर्स को इंटीग्रेटेड बीएड में ट्रांसफर किया जाए, कन्वर्ट किया जाए। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब ये हुआ कि ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड की पढ़ाई होगी, मतलब बच्चों का एडमिशन प्लस टू करने के बाद एडमिशन होगा, जिसको आईटेप बोलते हैं, जनरल बीएड को। आईटेप का मतलब हुआ इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, और इजी टेप बोलते हैं ISITEP, जो स्पेशल बीएड के प्रोग्राम होते हैं, उसका मतलब हुआ इंटीग्रेटेड इंक्लूजिव एंड स्पेशल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें ये 4 साल के कोर्स हैं, 4 साल के कोर्स में ग्रेजुएशन के सारे सब्जेक्ट, अगर साइंस का लेना है, साइंस में ग्रेजुएशन करना है तो साइंस के पेपर, आर्ट्स में करना है तो आर्ट्स के पेपर, कॉमर्स में करना है तो कॉमर्स के पेपर, साथ साथ बीएड के भी सब्जेक्ट्स सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 के बीच में पढ़ाए जाते हैं। और ये ड्यूअल डिग्री वाला कोर्स है, मतलब जब आप इस इजी टेप या जिस इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स को करेंगे तो ग्रेजुएशन की डिग्री आपको मिलेगी, साथ साथ बीएड की भी डिग्री मिलेगी, मतलब 4 साल में 2 डिग्री लेके आप निकलेंगे।
0: बहुत खूब, हमने पहले कहा था ना युवा साथियों कि बीएड स्पेशल एडुकेशन बहुत ही उम्दा कोर्स है। आप राजेश की बात सुनते हैं और आज से नहीं 20 साल से आपके लिए इस तरीके के कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं और जानकारियां दे रहे हैं, और जानकारियों के आधार पर बहुत सारे युवा रोजगार में आ गए, करियर में आ गए, ऊंचाइयों पर पहुंच गए। बीएड स्पेशल एडुकेशन बहुत ही उम्दा है, आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जी हाँ, नंबर नोट करें जिस पर आप फोन करेंगे, 1800-121-0051, 1800-121-0051 और 9431899002। बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है जिसे हम लेकर आते हैं अपने राज्य बिहार में स्थित टेक्निकल पढ़ाई का हब वाला यूनिवर्सिटी, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार। हम एक उन्नत और सुरक्षित बिहार चाहते हैं, इसीलिए ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। अवनीश जी, 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे, बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, लेकिन समय आज के कार्यक्रम में ज्यादा नहीं बचा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब 2-2 डिग्री लेकर निकलेंगे तो एंड ऑफ द डे, अंत में बच्चे युवा यही चाहते हैं कि अच्छा रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए कहां कहां और किधर जा सकते हैं? हालांकि आपने अभी बताया है लेकिन फिर से बताइए।
1: मैंने पहले कहा कि चूंकि सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान के आने के बाद जितने भी सरकारी विद्यालय हैं वो सबको सरकार की मैंडेटरी है कि वो इंक्लूसिव सेटअप में उस स्कूल को रखना है, मतलब कि ऐसा स्कूल जहां पे सामान्य बच्चों के साथ साथ दिव्यांग बच्चे भी पढ़ेंगे, तो उस विद्यालयों में इन शिक्षकों की भारी मांग है। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, चाहे वो CBSE के स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या और दूसरे प्राइवेट विद्यालय हो जैसे ICSE और CBSE के स्कूल हैं, वो सारे जगह पे मैंडेटरी है कि इन तरह के टीचर्स को उनकी बहाली कंपलसरी है, रखनी है उनको, और उनका वहाँ स्कोप है जहाँ वो एज ए टीचर काम कर सकते हैं।
0: बहुत ही उम्दा व्यवस्था है रोजगार के लिए, इसके अलावे भी है, मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथ आने वाला एपिसोड कंटिन्यू रहेगा, और जो लोग हमें सुन रहे हैं आज, आने वाला यानी आने वाला सोमवार जरूर हमें ट्यून कीजिएगा, और भी जानकारी देंगे कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है रोजगार की और कहां कहां संभावनाएं हैं, और चर्चा करेंगे अगर जो आपके फोन कॉल आए और आपने जो हमसे सवाल पूछा। बहरहाल बीएड स्पेशल एडुकेशन एकदम हॉट केक है, हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए। नंबर नोट करें अगर ज्यादा जानकारी चाहिए, 1800-121-0051, और दूसरा नंबर है 9431899002। थैंक यू।

0: गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय टेक्निकल कॉलेज का हब जमुआर सासाराम रोहतास में। तो राजेश को दीजिए आज के लिए इजाजत, सोमवार को मैं भी होऊंगा और डॉक्टर अविनेश भी होंगे, सुनना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद। आकाशवाणी का ये सासाराम केंद्र है एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। सुनने वाले आप तमाम श्रोता दोस्तों का गुड इवनिंग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लोग बातचीत करते हैं स्थानीय सांस्कृतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों पर और सामाजिक गतिविधियों पर, और इसके अलावे फिल्म संगीत का भी आनंद लेते हैं। तो आइए, सब कुछ करेंगे रोज़ की तरह आज भी। शुरुआत करते हैं स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से। जिला प्रशासन द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायतों तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद किया गया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 24 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन हेतु संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। दिनांक 6/7/2026 को यानी आज 10 बजे से DRDA सभागार सासाराम में उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिला पदाधिकारी रोहतास की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वयक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारी से क्रमानुसार उनके विभाग में लंबित कार्य के निष्पादनार्थ अंतर विभागीय सहयोग हेतु चर्चा की गई। सभी पदाधिकारियों के द्वारा अपने विभागीय कार्य हेतु संबंधित पदाधिकारी से लंबित अनापत्ति प्रमाण पत्र, जमीन की उपलब्धता इत्यादि के बारे में बताया गया। विशेषकर जिला शिक्षा पदाधिकारी रोहतास, निदेशक DRDA रोहतास, जिला योजना पदाधिकारी रोहतास, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य प्रमंडल सासाराम 1 एवं 2 इत्यादि के द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी से भूमि की उपलब्धता कराने हेतु चर्चा की गई।

जिला प्रशासन रोहतास द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन राजपुर प्रखंड के आंगनबाड़ी केंद्र राजपुर पर किया गया। इस पहल का उद्देश्य समाज में बेटियों के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। इस अवसर पर जिला परियोजना प्रबंधक मोहम्मद शमीम अंसारी ने आम जन से अपील की कि वे बेटियों के जन्म को गर्व और खुशी के साथ मनाएं तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संदेश है, बेटी है तो कल है। बेटी जन्मोत्सव के माध्यम से नवजात बालिकाओं एवं उनके परिवारों को सम्मानित किया जाएगा तथा बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जिला मिशन समन्वयक डॉ. फरहत दुर्रानी के द्वारा उपस्थित कन्या माताओं को बेटियों की शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित विभिन्न सरकारी योजनाओं की भी जानकारी प्रदान की गई। जिला प्रशासन का मानना है कि बेटी का जन्म केवल एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए उत्सव का अवसर है। शिक्षित, स्वस्थ एवं सशक्त बेटियां ही समृद्ध परिवार और सशक्त समाज की आधारशिला हैं। और अब आइए हम आपको लिए

इसी के साथ गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के पटना केंद्र से प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: दी, ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: आरबीआई कहता है,
6: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरबीआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
8: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर, 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू, राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपए कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार अब आम लोगों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में राज्य स्तरीय सहयोग शिविर आयोजित करेगी। इसकी शुरुआत 14 जुलाई से मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर स्थित संवाद भवन में होगी। एक रिपोर्ट।
1: ये विशेष शिविर उन आवेदकों के लिए होगा जो जिला स्तर पर आयोजित सहयोग कार्यक्रम में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद समाधान से संतुष्ट नहीं हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों बोधगया में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि वे स्वयं के स्तर से चयनित आवेदकों की शिकायतों की समीक्षा करेंगे।
2: सहयोग कार्यक्रम मैंने चलाया, उसमें सब ऑटोमेटिक है, किसी को कुछ नहीं करना। फिक्स किया कि 30 दिन में ऑर्डर करना है और 30 दिन में यदि किसी ने ऑर्डर नहीं किया तो 31वें दिन उसको सस्पेंशन ऑर्डर देना है, कोई दूसरा काम नहीं करना। और इसके बावजूद यदि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं कि महीने में एक दिन वैसे लोगों से मिलूंगा जिन लोगों को बिहार के किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी ने न्याय नहीं दिया और सीधा उसको जोड़ूंगा।
1: राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए आवेदन सहयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकेगा। आवेदक अपने पहले से दर्ज आवेदन के रेफरेंस नंबर और मोबाइल नंबर के जरिए ओटीपी सत्यापन कर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। चयनित आवेदकों को शिविर की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारी SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 1100 के माध्यम से ली जा सकती है। समाचार कक्ष से निधिश्री।
0: पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए प्रत्याशी 13 जुलाई तक नामांकन कर सकेंगे। 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 16 जुलाई है। मतदान 30 जुलाई को होगा। वहीं मतों की गिनती 3 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से आशीष रंजन।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में रेखा गुप्ता ने उम्मीद जताई कि इस बार उन्हें बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद मिलेगा।
4: बांकीपुर विधानसभा की जनता है, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है मुझे और इस बार राष्ट्रीय जनता दल बांकीपुर विधानसभा से जीतेगी। कोई चुनौती नहीं है, सारी चुनौतियां पहले भी थी और फिर भी मैंने फेस किया और बहुत अच्छा समर्थन मिला, इस बार भी मिलेगा और इस बार जीत कर आऊंगी।
0: गौरतलब है कि वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में भी राजद ने रेखा गुप्ता को ही उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में उन्हें 46,000 से अधिक मत मिले थे और वे दूसरे स्थान पर रही थीं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी ने प्रशांत किशोर को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। NDA की ओर से भी इस सीट पर जल्द ही उम्मीदवार के नाम घोषित किए जाने की संभावना है।

0: के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव में एनडीए का किसी भी दल से मुकाबला नहीं है।
1: लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है और जनता मालिक होती है वोट के समय। जहां तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के भी आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी, और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनौती।
0: इधर भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बांकीपुर सीट पर एनडीए उम्मीदवार को ही जीत मिलेगी।
2: बांकीपुर जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वो सीट खाली हुई है और उस सीट पर फिर से भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहले से ज्यादा वोट से जीतेगा। वोट में हम आगे रहेंगे, आरजेडी, कांग्रेस और चाहे प्रशांत किशोर लड़ें।
0: हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की पटना में आयोजित राज्य परिषद की बैठक में डॉक्टर अनिल कुमार को एक बार फिर सर्वसम्मति से पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, सदस्यता अभियान तेज करने तथा आगामी चुनावों की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपये कर वसूली के प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला में उन्होंने बिहार जैसे राज्यों के लिए इस व्यवस्था में शिथिलता बरतने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने भी इस व्यवस्था पर असहमति जताई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में मंत्री ने कहा कि यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि आम लोगों पर इसका आर्थिक बोझ न्यूनतम रहे।
3: पंचायतों में प्रति परिवार सालाना 1200 रुपए की राशि का कलेक्शन हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीधे एक एक परिवार से उतनी राशि का कलेक्शन हो। पंचायतों के अपने भी बहुत सारे संसाधन होते हैं, जिसमें पूरी कोशिश रहेगी कि लोगों के ऊपर कम से कम इसका बोझ पड़े। इस संबंध में एक मीटिंग भी थी नई दिल्ली में, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक वर्कशॉप का किया गया था कार्यक्रम। उस वर्कशॉप में बिहार के द्वारा एक आपत्ति भी दर्ज कराई गई कि जो कंडीशन है, इस कंडीशन पे एक रियायत मिलनी चाहिए बिहार को, चूंकि हम लोग इस ओएसआर को लेकर के पंचायत के खुद के स्रोत, आय के स्रोत डेवलप हो, उसको लेकर अभी काम शुरू कर रहे हैं, तो बिहार को इससे छूट मिलनी चाहिए, इस चीज की भी मांग की गई है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
4: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के जरिए नकद निकासी के नियमों में बदलाव किया है। एक रिपोर्ट।
5: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किए गए इस बदलाव के तहत आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से होने वाले उच्च मूल्य के नगद लेन देन को अधिक सुरक्षित बनाने पर जोर दिया गया है। अब 5000 रुपये या उससे अधिक की निकासी करने पर केवल बायोमेट्रिक सत्यापन पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी का सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य आधार आधारित भुगतान प्रणाली में सुरक्षा को मजबूत करना और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करना है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: Akashwani at 90.
1: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_पटना को फॉलो कर सकते हैं। मॉनसून की सक्रियता से राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने कल कटिहार और किशनगंज जिले में अत्यधिक भारी बारिश जबकि बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: दिनांक 7 जुलाई राज्य के अधिकांश भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा, हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के बांका, भागलपुर एवं पश्चिम चंपारण जिलों में एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के कटिहार एवं किशनगंज जिलों में एक दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: इधर पिछले 24 घंटे के दौरान भागलपुर में सबसे अधिक 47.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज 125वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें राष्ट्रीय चेतना को नई दिशा देने वाला राष्ट्रनायक बताया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। पटना स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सराफ की, संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया और सांसद रविशंकर प्रसाद समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा की फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की समय सीमा कल तक बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में एनटीए ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जहानाबाद जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे तक ही करने का आदेश जारी किया है। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भिड़ा मोड़ के पास एक ट्रक की चपेट में आने से ऑटो रिक्शा सवार 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 10 अन्य घायल हो गए। वहीं भोजपुर जिले के बिहिया पीटा स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक की मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ दरभंगा जिले के पहेड़ी थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के पियर थाना क्षेत्र अंतर्गत वरगांव में पुलिस टीम को बंधक बनाए जाने के मामले में 8 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 54 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। अररिया जिले के बैरगाछी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 327 पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान एक कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शिवहर जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के नया टोला में आपसी विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 3 महिला समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज पुलिस ने विशनपुर थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी और एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

0: एसपी 21वीं वाहिनी बगहा का 24वां स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कैमूर जिले के सभी 151 पैक्सों में आज आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा में समितियों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का लेखा जोखा पेश किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब हर महीने के दूसरे मंगलवार को पटना में लगेगा राज्य स्तरीय सहयोग शिविर, 14 जुलाई से होगी शुरुआत। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू, राजद ने रेखा गुप्ता को बनाया उम्मीदवार। राज्य सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों में प्रत्येक घर से सालाना 1200 रुपये कर वसूली के प्रस्ताव पर जताई आपत्ति। और मौसम विभाग ने कल कटिहार, किशनगंज, बांका, भागलपुर और पश्चिम चंपारण जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है किशनगंज जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: किशनगंज के नए जिला पदाधिकारी के रूप में आईएएस अधिकारी नवीन कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया तथा प्रशासनिक, विकासात्मक और विधि व्यवस्था से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, कृषि और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा तथा सीमावर्ती जिला में प्रशासन और पुलिस के बेहतर समन्वय पर भी बल दिया।
3: सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जो प्राथमिकताएं हैं उनका निष्ठापूर्वक पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है निष्ठापूर्वक उनका निर्वहन करे और आगामी जो बाढ़ है उसमें उसको लेकर जो भी प्रभावित नियंत्रण है उसी के लिए सब लोग लगातार हम प्रयास करेंगे और बाकी जो विकास के कार्य हैं जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सरकार के जो भी प्राथमिकताएं हैं उनका निर्वहन करें।
2: मानसून की सक्रियता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संभावित बाढ़ और नदी कटाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी। इसी क्रम में बीते दिनों जिला पदाधिकारी नवीन कुमार और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने संभावित बाढ़ एवं नदी कटाव प्रभावित क्षेत्रों का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने सुहिया स्थित रेतुआ नदी के कटाव स्थल पर चल रहे कटाव विरोधी कार्यों की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उन्होंने बेनुगढ़ में निर्माणाधीन डिग्री कॉलेज, भारत नेपाल सीमा पर फतेहपुर एसएसबी बीओपी टेरागज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, थाना और प्रखंड कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़, राहत, सुरक्षा और विकास कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है। इधर नेपाल क्षेत्र में लगातार वर्षा के कारण मेची नदी का जलस्तर बढ़ने से नेपाल भारत सीमा पर एसएसबी के बक्सरविटा सीमा चौकी बाढ़ की चपेट में आ गई। एसएसबी ने त्वरित राहत एवं बचाव अभियान चलाकर सभी जवानों, हथियारों, गोला बारूद तथा सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अभियान के दौरान 15 कर्मियों को सुरक्षित निकालकर अन्य सीमा चौकियों पर स्थानांतरित किया गया। सीमांचल की बहुप्रतीक्षित ठाकुरगंज चतेरहाट नई रेल लाइन परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का कार्य शुरू हो गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परियोजना की विस्तृत योजना, भूमि अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में व्यापार, कृषि

0: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच आसान होगी। जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों के विरुद्ध जून माह में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। 1 से 30 जून तक चले अभियान में 239 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस दौरान भारी मात्रा में ब्राउन शुगर, स्मैक और गांजा के साथ 2000 लीटर से अधिक विदेशी एवं देशी शराब बरामद की। अभियान के दौरान कई वाहन, 49 मोबाइल फोन, भारतीय और नेपाली मुद्रा तथा 83 मवेशी भी जब्त किए गए। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 14,52,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशा और अन्य आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध आगे भी अभियान जारी रहेगा। जिले में बीते दिनों बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी सिपाही चालक पद की लिखित परीक्षा जिले के 10 केंद्रों पर शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। नशा मुक्ति सप्ताह के समापन पर खगड़ा स्थित सम्राट अशोक भवन में जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई तथा लोगों को नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सभी प्रकार के मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील की। पंचायत विकास दिवस के अवसर पर जिले के 7 प्रखंडों में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। जीविका और मद्य निषेध विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकाली गई प्रभात फेरियों के माध्यम से लोगों को सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के संदेश दिया गया। सीमा सुरक्षा बल की 132वीं बटालियन के तत्वाधान में खगड़ा स्थित बीएसएफ मुख्यालय के खेल मैदान में जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। डायमंड जुबली वर्ष के अवसर पर आयोजित सह प्रतियोगिता 10 जुलाई तक चलेगी। अधिकारियों ने युवाओं से खेलों के माध्यम से अनुशासन, भाईचारा और सकारात्मक सोच अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्र जनता दल ने किशनगंज में अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया। जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी का झंडा फहराया, दीप प्रज्वलित किया और संगठन को और मजबूत बनाने का संकल्प लिया। जिले में मुहर्रम शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। प्रशासन व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के बीच संवेदनशील क्षेत्रों और जुलूस मार्गों की निगरानी ड्रोन कैमरा से की गई। जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने स्वयं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। राष्ट्र पल्स पोलियो अभियान के तहत जिले में 5 वर्ष तक के 3,22,826 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया। जिला पदाधिकारी नवीन कुमार ने अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के लिए 1050 टीमें, 2092 टीकाकर्मी और 315 सुपरवाइजर तैनात किए गए। स्वास्थ्य विभाग ने अभिभावकों से सभी बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे किशनगंज जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विशाल कुमार।
2: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं।

आई लव यू, कहो ना प्यार है, ये सब कुछ सुनना और कहना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, और कालका से आप हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और विट्टा बजाज।

चलिए सुनते हैं दो रास्ते फिल्म का एक गीत, पसंद आप सबों की है। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन विद्यार्थी, संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार विद्यार्थी, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम कुमारी, साक्षी, अच्छेलाल राय, बुल्की वाली और फलना झा। नया नगर सुपौल बिहार से श्वेता रंजन विद्यार्थी, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, पप्पू जी, गजेंद्र कुमार निराला और चिलना झा। गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहाकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तावड़े, आशीष मुरहेकर। और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया, नमन ढेंगिया और अपार ढेंगिया। आप सबों की पसंद पर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं दो रास्ते फिल्म का एक गीत, जिसे हमारे ये श्रोता भी सुनना चाहते हैं। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुरहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज। और कलेर बिहार से निकहत प्रवीण, सदा फारजू और सादिया तस्नीम। तो आइए सुनते हैं आप तमाम श्रोताओं की पसंद पर दो रास्ते फिल्म का ये गीत।

आया सावन झूम के, इस फिल्म का एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। पसंद आप सबों की है। फुटानी चौक निरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन, छोटू, अमित, सुमित, अमन पराशर, आराध्या और लल्लू पंडित।

शमा का काम है हर ओर उजाला करना, किसी के दिल में चिंगारी जले तो क्या करना। मोहब्बत की राह में अक्सर यही अंजाम होता है, कोई मुस्कुराता है तो कोई बदनाम होता है।

ईमान पसंद कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं राजा और रंग फिल्म का एक गीत पसंद आप सबों की है। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय कारी मीना कारी पुंजराज आरती आकर्षण और जयश्री आप हैं साकिबा आलिया इब्राहिम कमाल मिराज निसार पंकज कुमार आकाशी सासाराम से।

इस गीत को हमारे ये श्रोता भी सुनना चाहते हैं। ग्राम बेलाढ़ी सासाराम से सुरेंद्र महतो, दिलीप कुमार, उपेंद्र पासवान और इनके परिवार के सभी सदस्य।

दोस्तों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत और दौर होता है युवा अवस्था, जब सपने रंगीन होते हैं, दिल में नई उमंगें होती हैं और हर पल कुछ नया करने का उत्साह भी होता है। इसी मासूम एहसास और चंचल उम्र की कहानी बयां करता है ये अगला मधुर गीत। उम्र की दहलीज पर जब बहारें मुस्कुराती हैं, हर धड़कन में नई उम्मीदें जगमगाती हैं, जिंदगी का हर लम्हा बन जाए एक प्यारा सा अफसाना, जब जब जवानी अपनी पहली दस्तक सुनाती है।

इस खूबसूरत गाने के लिए ईमेल किए हैं हमारे ये श्रोता। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब RGBOAH844D, जी हाँ ये एड्रेस है उनका, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पंवार, डैनी पंवार, मनीष पंवार, राम देवरा से, दिनेश चौहान डांगरी से, बाबूराम जयपाल खलीफों की बावड़ी से, आप हैं खुदा बख्श खलीफा।

इस गीत को सुनना चाहते हैं टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार और अनुश्री श्याम कुमार।

और अब शामिल हो रहे हैं हमारे ये श्रोता। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से आप हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप सबों की फरमाइश है दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये टाइटल सॉन्ग।

मुलाकातें तय नहीं होती है ना, फिर भी पूरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद बन जाती है। बात सही है या गलत, या फिर आप तमाम सुनने वालों में से कभी यह घटना घटी घटी होगी ना। और राहें जब किसी अपने से टकरा जाएं, तो दिल की धड़कनों में एक नया नगमा जन्म लेता है। तो आइए इसी मीठे एहसास को महसूस करते हैं और सुनते हैं एक खूबसूरत गीत। लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियां भी सुन लीजिए, क्योंकि बात राहों की हो रही है, मुलाकात की होगी। इसीलिए कह रहे हैं हम कि राहों में यूं ही कोई हमसफर मिल जाए, राहों में यूं ही कोई हमसफर मिल जाए, सोनी सी जिंदगी में बहार खिल जाए, एक मुस्कान जो दिल को छूकर गुजर जाए, आए हाय हर सफर फिर यादों का खजाना बन जाए।

विजय पथ फिल्म के इस गाने को सुनना चाहते हैं। मुंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, गांव फरांसी जिला बिहार हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी और पुष्पेंद्र कुमार डुड्डी। दिनारा से आप हैं जयराम सिंह, श्रीमती सुषमा सिंह, जेके मिश्रा, श्वेता रानी पाठक, रुचि कुमारी, मंदेश्वर सिंह, प्रभात, पुरुषोत्तम, सौरभ, अर्पित, हर्षित, हनी, केशव, कैसवी, गिल्लू, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे।